एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियाँ अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख

0: प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और DTH पर सुन सकते हैं और इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन है न्यूज ऑन AIR, जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय ले सकते हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: वंदन वार।

चिंतन। बालगंगाधर तिलक का कथन है, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। भक्ति संगीत।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के।
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं।

0: एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

ध्वनि तरंगों की तल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का आज भाग 217। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, गज तत्ववाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। ये कार्यक्रम आप शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष। आज 32वीं कड़ी, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री श्यामा पर। 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश। 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, अंजलि की कहानी सुनिएगा। कहानी सुनिएगा अंजलि, लेखक है अरगवान अब्बी। छाया गीत शाम 5 बजे। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन सुनिएगा। शाम 7 बजे जयबाला। 7:45 पर गुलदस्ता।

रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका सफेदी के पेड़। लेखक रेवती सरन शर्मा, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें कि सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। नौ बजकर तीस मिनट पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री श्यामा पर।

0: 10 बजे छाया गीत होगा, 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात, रात्रि 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। ये था लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: संगीत सरिता के अंतर्गत आज से हम आपको सुनवा रहे हैं गज वाद्यों पर आधारित श्रृंखला गज तत् वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इसकी पहली कड़ी।
1: नमस्कार। भारतीय संगीत में गज वाद्यों की अपनी परंपरा रही है। गज, जिसे अंग्रेजी में बो कहा जाता है, प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य के नाम से संबोधित किया है, किंतु 20वीं शताब्दी के कतिपय लेखकों ने प्रहार से वादन किए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य और गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को वितत्वाद्य की संज्ञा प्रदान की है। गज वाद्यों को वितत कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथों में अवनद वाद्य को वितत वर्ग के अंतर्गत बताया गया है, इसलिए इसे गज वाद्य कहना या गज तत्वाद्य कहना अधिक उचित प्रतीत होता है, जिससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि वे वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं और उन्हें गज से घर्षण करके बजाया जाता है। गज वाद्यों की यह विशेषता है कि इन वाद्यों द्वारा एकल वादन अर्थात सोलो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और इन वाद्यों से साथ संगत भी अच्छी तरह की जाती है। इतना ही नहीं, इन वाद्यों का वाद्य वृंद में बहुत प्रयोग किया जाता है। वर्तमान भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस वर्ग के वाद्यों में वायलिन, सारंगी, इसराज, दिलरुबा, तार शहनाई आदि वाद्य प्रचलित हैं। श्रोताओं, आज हम सर्वप्रथम वायलिन वाद्य की चर्चा करेंगे। वर्तमान में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संगीत में वायलिन ने अब अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। वायलिन को उत्तर भारत में बेला नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि रावण हस्त वीणा लंकाधिपति रावण द्वारा बनाई गई थी, जिसके दो तारों को गज से बजाया जाता था। संगीत सुधाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत राज आदि ग्रंथों में गज से बजाई जाने वाली पिना की वीणा का वर्णन उपलब्ध होता है, किंतु यह स्वीकार करने में हमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि वर्तमान वायलिन पाश्चात्य देशों की ही देन है। वायलिन का आविष्कार किसने किया, यह आज भी एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ विद्वान गास्पर ट्विफू प्रगर को वायलिन का आविष्कारक मानते हैं। कुछ चिंतकों का चिंतन है कि वायलिन को क्रीमाना के आंद्रे आमाती ने बनाया। कुछ गुणीजनों का विचार है कि वायलिन का निर्माण गैस्पारो बर्तलोत्ती अर्थात गैस्पर द सालो द्वारा किया गया है। कुछ जानकार वायल से वायलिन की उत्पत्ति मानते हैं और कुछ संगीतज्ञों का मानना है कि वायलिन का विकास रिबेक और रबाब वाद्य के आधार से हुआ है। इसका आविष्कारक भले कोई भी हो अथवा किसी वाद्य से इसका विकास हुआ हो, पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वायलिन ईस्वी सन 1505 से 1530 तक निर्मित हो चुका था। भारत में वायलिन का प्रयोग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हो रहा है। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय श्री बालुस्वामी दीक्षित जी को दिया जाता है। उत्तर भारत में वायलिन का शास्त्रीय संगीत में प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। श्री पी ए सुंदरम अय्यर, श्री गगन बाबू, बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां, श्री बलवंत सिंह हुगुन आदि कलाकारों द्वारा वायलिन पर उत्तर भारतीय संगीत को प्रस्तुत किया गया। सच पूछा जाए तो इन्हीं कलाकारों द्वारा वायलिन की लोकप्रियता का श्री गणेश हुआ। तत्पश्चात श्री वी जी जोग, पंडित गजानन राव जोशी, श्री डी के दातार, श्री एम एस गोपाल कृष्णन, डॉक्टर श्रीमती एन राजम, श्री शिशिर कणाधर चौधरी और श्रीधर पारसेकर आदि कलाकारों द्वारा वायलिन का केवल प्रचार ही नहीं, बल्कि इनके द्वारा

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

द्वारा इसकी वादन तकनीक को भी अत्यंत समृद्ध किया गया। तो आइए सुनते हैं पीडी सप्तऋषि जी का वायलिन वादन, राग है जौनपुरी।

गजतत्वाद्य, गजवाद्यों पर आधारित श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल के सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के।
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह, आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री को जो अपनी शोखी के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम है श्यामा। सन 1954 फिल्म भाई भाई, सन 1956 फिल्म भाई भाई, श्यामा की चंदंग में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में है।

भाई भाई फिल्म का गाना गीता रॉय की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत मदन मोहन का था। एक बार फिर आ रही है गीता रॉय की ही आवाज। मजरू सुल्तानपुरी ओपी नैयर, फिल्म आर पार।

भाभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था। राजेंद्र कृष्ण की बोल थे, संगीत चित्रगुप्त का था। विविध भारती से आप बोले बिसरे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

शारदा फिल्म का गीत था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और सी रामचंद्र की तरस थी आशा भोसले की आवाज। दिन की इस भागदौड़ में सुबह के 7:18 हो चुके हैं। लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों के सहारे आगे बढ़ते हैं।

शरद फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था, एस एच बिहारी के बोल थे, संगीत खुद हेमंत कुमार का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अपना घर फिल्म का गाना, गीता रॉय और मुकेश की आवाजों में, प्रेम धवन के बोल, रवि की तर्ज़।

इसी के साथ आज का बोले बिसरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है, लेकिन विविध भारती से हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण जारी है। तो दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग रहिए। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। आज के इस अंक में आप हैं अपनी रेडियो दोस्त संगीता के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के इस सुविचार से। किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। और अब जानकारी लेते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो आज ही के दिन यानी 12 जून को इतिहास में घटित हुए। 2016 में आज ही के दिन साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता। 2007 में आज ही के दिन कनाडा में होने वाले जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 भारतीयों का चयन हुआ। प्रख्यात फिल्म निदेशक मृणाल सेन को 10वें ओसियाना सिनेफैन फिल्म समारोह में आज ही के दिन 2008 में पुरस्कृत किया गया।

और अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को जो आज के दिन जन्मे। हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का जन्म आज के दिन 1957 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर ई श्रीधरन, इनका जन्म आज के दिन 1932 में हुआ। और अब जान लेते हैं उन विभूतियों को जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का निधन 2017 में आज के दिन हुआ। बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार अमित चक्रवर्ती का निधन 1986 में आज के दिन हुआ। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री डी जे तेंदुलकर, इनका निधन आज के दिन 1972 में हुआ।

और अब जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की। कैमूर पहाड़ी के रोहतास वन प्रक्षेत्र के जंगलों में वन्य जीवों की मौजूदगी ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। लंबे समय बाद इस इलाके में तेंदुए और भालू जैसे हिंसक वन्य जीव कैमरा ट्रैप में कैद हुए हैं। वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरों में दो तेंदुए, एक भालू समेत कई दुर्लभ वन्य जीवों की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के चिकसिल पंचायत के कुल 14 वार्ड में नाली निर्माण, पीसीसी ढलाई व ग्राम विकास के तहत जिस तरह आंगनबाड़ी का निर्माण कराया गया है, उससे कराकट प्रखंड के अन्य सभी पंचायतों का विकास काफी पीछे है। यही कारण है कि चिकसिल पंचायत के कुल 7 गांव के लोग खुश हैं। कराकट प्रखंड का यह इकलौता पंचायत है जहाँ के मुखिया को अपने से ज्यादा पंचायत व क्षेत्र के लोगों के विकास की चिंता सताती है। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 13 जून शनिवार एवं 14 जून रविवार को निजी वाहक चालकों एवं सरकारी वाहन चालकों के लिए मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। रोहतास जिला परिवहन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों से ड्राइवरों को बुलाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू होगा प्रशिक्षण।

भभुआ में अब गाय बकरी पालना भी साइंस से होगा। जीविका कैमूर और कम्फेड ने मोहनिया की उन्नति सीएलएफ में पशु सखी दीदियों को वैज्ञानिक पशुपालन का प्रशिक्षण दिया। मोहनिया और रामगढ़ प्रखंड की पशु सखियों ने इसमें हिस्सा लिया। मकसद साफ है, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पशुपालन से होने वाली आय को डबल करना। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने पशुओं की देखभाल

के हर पॉइंट पर क्लास ली। पशु सखियों को बताया गया कि संतुलित पोषण कैसे दें, बीमारी की पहचान और रोकथाम कैसे करें, टीकाकरण कब कब करवाएं और दूध की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। भभुआ में सखी वार्ता कार्यक्रम में महिलाओं एवं किशोरियों को सामाजिक कुरीतियों, महिला अधिकारों तथा विभिन्न सरकार

कैसे बढ़ाएं। भभुआ में सखी वार्ता कार्यक्रम में महिलाओं एवं किशोरियों को सामाजिक कुरीतियों, महिला अधिकारों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। बता दें कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS कैमूर के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला परियोजना प्रबंधक कुमारी प्रियंका राज की अध्यक्षता में कैमूर जिला अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड के खजुरा पंचायत के कुल्हड़िया गाँव में सखी वार्ता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

सासाराम में खरीफ महाभियान 2026 के तहत सासाराम प्रखंड कार्यालय परिसर में कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिव्यांशु ने की, जबकि उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी प्रभाकर ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सासाराम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य भर में 11 जून से 17 जून तक विशेष राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग, अपलोडिंग एवं निष्पादन कार्य में तेजी लाई जाएगी। साथ ही सभी जिलों के अंचलों में विशेष शिविर आयोजित कर भूमि संबंधी मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।

कैमूर में मनरेगा की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले 72 पंचायत रोजगार सेवकों एवं 6 कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि जिला में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कार्यों के नियमित निगरानी को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कैमूर डीएम नितिन कुमार सिंह ने जिला स्तर पर मनरेगा एवं संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि कई कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा एवं पंचायत रोजगार सेवकों ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य निष्पादन नहीं किया है। कैमूर जिला अंतर्गत बच्चों को युवाओं और वीरता, विज्ञान व नवाचार इत्यादि के क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के मद्देनजर नामांकन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विभागीय जानकारी के मुताबिक इस पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। 5 से 18 साल की उम्र के बच्चे पात्र होंगे। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के बाद सुनते हैं एक और गाना फिल्म अनाड़ी से।

और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। नीति आयोग की बैठक में बिहार के लिए 18,000 करोड़ की सहायता राशि मांगी, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से बिहार के लिए 18,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने हर घर नल का जल कार्यक्रम में निवेश कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया है। कुछ कारणों से इस योजना के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि नहीं मिल सकी। उन्होंने इस मद में खर्च की गई राशि के केंद्रांश के रूप में 13,000 करोड़ रुपए और वर्तमान में संचालित योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बैठक में विचार और सुझाव रखने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आगे प्रभात खबर की सुर्खी है, गृहिणियों को कहें राष्ट्रीय निर्माता, हर माह 30,000 रुपए की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने समाज की पारंपरिक सोच को बदलते हुए गुरुवार को एक युगांतकारी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गृहिणियों होम मेकर्स को राष्ट्र निर्माता के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के घरेलू काम और देखभाल की कीमत कम से कम 30,000 रुपए प्रति माह मानी जानी चाहिए। मुआवजे की गणना करते समय अब इस राशि को आधार बनाया जाएगा। राज्य में समय से पूर्व मानसून की दस्तक, इस खबर को सभी अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है, भीषण गर्मी और उमस से परेशान बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गुरुवार को दक्षिण पश्चिम मानसून ने राज्य में दस्तक दी। निर्धारित तिथि 13 जून से दो दिन पहले मानसून का 6 जिलों किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार एवं मधुबनी में प्रसार हो गया है। मौसम विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार इस दशक में यह मानसून का सबसे तेज प्रसार है। अगले 2-3 दिनों में शेष इलाकों में इसका प्रसार होने के आसार हैं।

हिंदुस्तान की सुर्खी है, केरल में निपाह की पुष्टि, एक व्यक्ति संक्रमित मिला। केरल में कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 43 वर्षीय एक व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की। हालांकि पुणे से अंतिम पुष्टि का आना बाकी है, लेकिन कोझिकोड में आपातकालीन प्रोटोकॉल एवं रोकथाम उपाय लागू कर दिए गए हैं। हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष व ठेकेदार जगदीश के ठिकानों पर छापे, इस खबर को सभी अखबारों ने सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 85 लाख से अधिक है 6 भूखंडों की कीमत, इन संपत्तियों का पता चला। 15 लाख की राशि फ्रीज की गई 7 बैंक खातों में। 1.50 लाख प्रीमियम भुगतान LIC पॉलिसी का। 208% आय से अधिक संपत्ति के मिले साक्ष्य। आगे दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत ने कैंसर दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए दी मंजूरी। भारत ने एक नियामक और प्लैटिनम आधारित कैंसर की दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी है, जो कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण कमी का सामना कर रही है।

और अब एक नज़र आर्थिक एवं खेलकूद जगत से। सेंसेक्स 151 अंक टूटा, निफ्टी भी नीचे। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट आई और दोनों मानक सूचकांक नुकसान में रहे। बीएसई सेंसेक्स जहां 151 अंक टूट गया, वहीं एनएसई निफ्टी 53 अंक फिसल गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के साथ निवेशकों के सतर्क रुख अपनाए जाने से बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 150.63 अंक यानी 0.20% टूटकर 73,832.55 अंक पर बंद हुआ।

बारिश में भारत एक ही 4 रन से हार। सितारों से सजी भारत ए टीम को गुरुवार को त्रिकोणीय वनडे सीरीज के बारिश से बाधित दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ए के हाथों डकवर्थ लुईस पद्धति से 4 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। भारत वार्षिक अपडेट के बाद ICC के पुरुषों की वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 14 जून के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। और आज के इस अंक में यहीं तक। कल नए खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो दो संगीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार प्रभात सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे

0: को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कैनेडा

0: कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कर्मा फिल्म का गाना। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की। आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कर्मा फिल्म का गाना। पेश है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

तराना फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाजें थी उषा मंगेशकर और साथियों की, रविंद्र रावल की रचना थी, धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने। इस गाने को सुनना चाहा था कलीर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकट प्रवीण, सदाफारजो, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और अलीशा। इसी गाने को सुनना चाहा था आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पराया धन, आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, नरहन स्टेट से नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या और विनीता मिश्रा।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया फीडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया फीडबैक।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

सुहाना सफ़र फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने की फरमाइश की थी फुटानी चौक नारायण स्ट्रीट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित सुमित छोटू, बीके सुरगनैया, जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवन राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम और चांदनी नाज। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुर्बानी से, गायक कलाकार हैं कंचन मनहर आनंद, गीतकार हैं इंदी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, राही श्रीमती सरिता ग्वाड़कर, प्रिंस एकांश ग्वाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाड़कर, प्रणीता ग्वाड़कर, अर्जुन ग्वाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वाड़कर, सुमित।

ग्वाड़कर और कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर। इसी गाने की फरमाइश की है गोकुल चौक गंग जला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली झलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रस्त चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8 बजकर
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
3: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
2: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

0: द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मॉनसून की दस्तक। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह आग्रह किया। उन्होंने हर घर नल का जल योजना के मद में खर्च की गई राशि के केंद्रांश के रूप में 13,000 करोड़ रुपए और वर्तमान में चल रही योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश के लिए निफ्टेम सहित शैक्षणिक और प्रबंधन संस्थानों की स्थापना, 10 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क आवंटित करने और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भी आग्रह किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2028 में नेशनल यूथ गेम्स, वर्ष 2030 में हॉकी विश्व कप और 2031 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की भी अपेक्षा की है। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,365 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने पटना में कहा कि इस निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गरीब का अपना घर हो। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की बहाली की जाएगी। उन्होंने पटना में कहा कि विभाग ने ऑनलाइन राजस्व सेवाओं को प्रभावी ढंग से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि विभाग द्वारा 8,054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पुलिस ने पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि 88 आरोपियों के खिलाफ

0: की जा रही है।
1: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो हैं वो स्कॉलर हैं, कुछ जो हैं वो अभ्यर्थी हैं, इन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति संवाद का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति संवाद आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कुलाधिपति के समक्ष विद्यार्थी और शिक्षक अपने विचार रखेंगे। संवाद में आए विचारों पर लोक भवन नीतिगत निर्णय लेगा। वहीं राज्यपाल ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ कम से कम एक विदेशी भाषा के अध्ययन अध्यापन की भी व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में की जाए। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसान 40245981800 नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर सकते हैं। इस नंबर पर मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ICAR के हैदराबाद स्थित भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बताया कि यह पहल सामूहिक तिलहन अनुसंधान का पहला ऐसा प्रयास है जो देश के प्रत्येक किसान तक पहुंचाया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिले में पहुंच चुका है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
1: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।

0: सारण एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिले में सबसे अधिक 148 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सरायगढ़ भपटियाही में 106 मिलीमीटर और सुपौल के बलतारा में 70.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात चार पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने से यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार और नीरज कुमार तथा ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक थाना प्रभारी सागर पासवान की बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को खत्म करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के नागरिकों से बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण बचपन को और अधिक सशक्त बनाने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लोगों से बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहने की अपील की है। वहीं श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाला यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगवानी वाली भारतीय टीम इतिहास रचने का प्रयास करेगी और अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विश्व कप के दौरान 7 स्थानों पर 33 मैच खेले जाएंगे, जिससे यह ICC महिला T20 विश्व कप का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिहार जिले के सभी प्रखंडों में 17 और 18 जून को प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस 2 दिवसीय शिविर में आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, सत्यापन, EKYC तथा लाभ वितरण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन तक रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में यह 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। दूसरे अग्रिम अनुमानों में केले, आम, पपीता, सेब और अमरूद के उत्पादन में वृद्धि से फल उत्पादन 1,214 लाख टन से अधिक रहने की संभावना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मौसम की खबर पर लिखा है, राज्य में समय से पूर्व मानसून की दस्तक,

0: सात जिलों में हुई झमाझम बारिश। दैनिक जागरण ने ईओयू की कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लेखापाल का वेतन 50,000, 8 भूखंड समेत बनाई 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति। दैनिक भास्कर ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मांग का शीर्षक लगाया है, सम्राट ने केंद्र से मांगे 20,250 करोड़ और कई बड़े प्रोजेक्ट। प्रभात खबर लिखता है, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में 7.5 CGPA वालों को ही मिलेगा 4थे वर्ष में प्रवेश। राष्ट्रीय सागर की प्रमुख खबर है, निशांत और पवन सिंह सहित 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। आज अखबार की सुर्खी है, सरकारी शिक्षकों को ट्यूशन कोचिंग पर प्रतिबंध। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मॉनसून की दस्तक, मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहां लापरवाही नहीं पहुंचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
2: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
1: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल
6: और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
8: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मलिका। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार सुनिएगा 10:45 पर।

सुबह 11 बजे सुनिएगा भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। लोक माधुरी आपको फिर सुनवाएंगे दोपहर 1 बजे।

शाम का स्वागत कीजिए भक्ति संगीत कार्यक्रम से। कार्यक्रम होगा वंदन। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6 बजे से। भोजपुरी समाचार बुलेटिन आपको सुनवाएंगे शाम 6:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर सुनिएगा शाम 6:10 पर। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे शाम 6:40 पर। गुड इवनिंग रोहतास सुनिएगा शाम 7:15 पर।

ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 7:50 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे रात्रि 9 बजे से। बंदगी कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 पर। रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण होगा आकाशवाणी के पटना केंद्र से। समय होगा शाम रात्रि 9:30 पर। एल्बम में गीतों का कार्यक्रम रसरंग आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। गीत मालिका कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रंग फिल्म का गाना।

सौदागर फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाजें थी मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की। आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बाजीगर, आवाजें हैं आशा भोसले और विनोद राठौर की। जफर गोरखपुरी की रचना है, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: इसी गीत के साथ गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: यह है विविध भारती।
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।
1: ए

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर।
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का।
0: जी,
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहने लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई।
0: जी,
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे
0: नाम
1: वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है।
0: जी बिल्कुल।

2009 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात ये है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

0: चले दम।
1: सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

अभिनेत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक

0: 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा नहीं किया
0: अच्छा। कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी।
2: दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का

असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रजनीश श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम सबसे पहले सुनेंगे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक खबरें। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बैडमिंटन के कोच एवं शारीरिक शिक्षक राकेश कुमार राय के पास, और उनसे हम जानेंगे बैडमिंटन

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रसधार कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए भोजपुरी एल्बम गीत।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अरे छोड़ी गई ले रे

0: राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: आवाज है भरत शर्मा व्यास की।
2: एक करवटिया कारी, एक कर...

विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के।

सहयोग से यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

आवाज है भरत शर्मा व्यास की, गीतकार कुंजन, संगीतकार भरत शर्मा व्यास, एल्बम का नाम राजा पिया जानी।

विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले

प्रतिज्ञाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गाँव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीत, आवाज थी भरत शर्मा व्यास की। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

जमाने को दिखाना है फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में। संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

पत्ते तक बैगुन परा।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गईयों से भी शिकायत करती।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था। और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना, अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियां भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतज़ार। और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद, हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें, उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि पला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, जरा ये भी तो अंदाजा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारेख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब जरा कुछ और टिप्पणियां भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा।

0: वाली कहानी और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौआ की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविजन पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, पर अफसोस वो अब नहीं है। ओफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल। जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती, बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना।
1: चेहरे से हटा सकता नहीं,
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है।
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं,

कन्यादान फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है, हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा।

0: लागी छूटे ना। उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा। जिंदगी में शायद साथ इतना ही था, और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया, इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं, और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन जरा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है, बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है, और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सब ने

अपने अपने बचपन में सुनी हैं। दरअसल वो जो कहानियों वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियां याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहां हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल धानवी की पंक्तियाँ प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतजार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

गीतकार एसएच बिहारी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है शर्मिला टैगोर, एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है। जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं, कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है। बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। मुकेश की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो ज़रूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मजा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिर

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है, यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आज के प्रोग्राम का सफ़र बस इतना ही। सुरीला सफ़र का यह सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 थानाध्यक्षों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। गौरतलब है कि देर रात सड़क दुर्घटना में मधेपुरा जिले के अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलाड़ी थानाध्यक्ष नीरज कुमार और रतवारा थानाध्यक्ष साजन कुमार और कार चालक की मौत हो गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को खत्म करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम है बाल

0: ریاست میں مانسون کے اثر سے بارش کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مدھوبنی، دربھنگا، سمستی پور، ویشالی، مظفرپور، سیتامڑھی، شیوہر، بھوجپور، بکسر، کیمور، روہتاس اور اورنگ آباد ضلع میں زبردست بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ادھر ریاست کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 1 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کی کمی درج کی گئی ہے۔ ارریہ ضلع کے الگ الگ تھانہ علاقوں سے پولیس نے شراب، نشہ آور اشیاء اور ممنوع کف سیرپ کے ساتھ 3 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ وہیں شیخپورہ نگر تھانہ علاقے کے یحییٰ پور محلہ سے پولیس نے ایک آٹو پر سے کثیر مقدار میں شراب کے ساتھ 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो या ओ लेवल या सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन

0: आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो के घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है। अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार

0: सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी

0: क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी

0: पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना और रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहंदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जी,
0: जी
1: मैं चांदनी जी बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़
0: चांदनी जी,
1: बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है
1: जी
0: चांदनी जी,
1: जी
0: क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी, क्या
1: और
0: बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी
1: जी
0: जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम,
0: अच्छा
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है, एक
0: अच्छा,
1: भैया
0: क्या
1: है
0: बात
1: मेरी।
0: है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं, तो हम आपको यादों के गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहां जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो, तो हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे, वो खाकी कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले,
0: जी
1: खाकी
0: जी
1: कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे, उसके बाद
0: हाँ
1: फिर और बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए, तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि
0: क्या बात।
1: बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए, आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान, गाने के बोल है मैं ना भूलूंगा मैं
0: मैं ना
1: ना
0: भूलूंगी।
1: भूलूंगी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जय सवाल बोल रहे हैं, झांसी से। हाँ,
0: झांसी से धन्नो जयसवाल।
1: झांसी।
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना हो, या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे मैडम, सब हम करते थे। हाँ,
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के और उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए
1: हाँ,
0: आप ही
1: तुम
0: की
1: बिन तुम बिन
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको नाखुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये मेरी दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी
1: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ बिड़ले से। हाँ
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन? क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं कुछ हूँ। और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, टाटी चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों
1: नहीं,
0: तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: बहुत
0: और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का। वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का
1: हाँ
0: साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी
1: यस,
0: का एक
1: हाँ हाँ
0: अपना
1: यस,
0: अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।

0: बहुत बहुत बहुत। हाँ
1: जी, तो घर में आपके बच्चे भी
0: हाँ
1: हैं?
0: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
1: जी
0: हाँ
1: जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे
0: हाँ
1: थे तो गर्मी की छुट्टी
0: हाँ
1: के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना? तो उन दिनों
0: हाँ
1: में
0: यस
1: बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
0: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते तो पढ़ाई में ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
1: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
0: ओ बहुत बहुत
1: करते थे?
0: हाँ ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
1: हाँ
0: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
1: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना?
0: बहुत बहुत मैम
1: जी, आपसे बात करके हमें
0: बहुत
1: बहुत
0: कुछ।
1: अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
0: हाँ
1: बताइए, आप
0: हाँ
1: कौन सा
0: मैं भी
1: गीत सुनना चाहती हैं?
0: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है उनको पसंद है
1: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए
0: बहुत
1: आप सुनना चाहती हैं।
0: पसंद है यस
1: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है
1: जी,
0: ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली एक गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ। तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है, घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं, कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ। मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ
0: जी।
1: और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी, ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत, उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो शहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला।

0: महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना। दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना। मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से। मैं
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: बस गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में, गाने
0: जी
1: का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की। पापड़
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं।
1: बनाते ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते,
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से। ओ, घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं, तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं।

0: पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता। कहाँ से बात कर
1: हाँ
0: रही हैं
1: जी,
0: आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। कोटपुतली
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी,
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई हूँ।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी

0: है।
1: बहुत अच्छी बात
0: इसलिए
1: है। तो पेशेंट को किस तरह से आप शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
0: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
1: जी
0: होगा। तो
1: बिल्कुल जी
0: इसीलिए जड़ से उपचार करने के हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
1: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
0: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर वो
1: जी
0: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए

0: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
0: जी।
1: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से। तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी हैं?
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी।
0: जी तो सुनीता जी, हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं
0: जी।
1: देवर के, एक है, एक मेरा है।

0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ
0: जी,
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ।
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुना था, मेरे घर आई है नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, सालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये
1: जी। एक
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए

अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी। फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं।

लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहां रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से

बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लो। प्रेम ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिका कर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत। तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोचकर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू, प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्म आ जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकाएक

जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

0: एफएमबैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे देते हैं। अब से थोड़ी देर में शाम 4:35 पर आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत, और शाम 5:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। शाम 5:05 पर आप सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, और शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी घर परिवार में बढ़ते बच्चों का पोषण। गीत संगीत होंगे कानून हमारे लिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। चलते चलते में बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाइए, इस पर भी आप जानेंगे। कार्यक्रम में आज की सूत्रधार है विनीता सिंह, और शाम 6:00 भोजपुरी लोकगीत आप सुनिएगा। शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन प्रसारित होगा। शाम 6:10 पर गांव घर कार्यक्रम आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों का, जिसमें चर्चा सुनिएगा बाल मजदूरी एक कानूनी अपराध, बाल मजदूरी के खिलाफ दिवस पर विशेष। लोकगीत भी आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे मनोरंजन ओझा से, और भेंट वार्ता सुनिएगा पुनर्वास नीति और कानून। भेंट वार्ताकार होंगे हिरेंद्र कुमार सिन्हा, इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। एक जानकारी में परिवार पर दे ध्यान, इस पर आपको जानकारी दी जाएगी। शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा, और शाम 7:15 पर हम लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा। शाम 7:50 पर आप सुनिएगा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा, और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनिएगा बंदगी में कव्वाली, और रात्रि 9:30 पर सुनिएगा पटना से रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण। रात्रि 10:00 रसरंग में हिंदी एल्बम सॉन्ग प्रसारित होंगे, और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और रात्रि 11:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर, और सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:35 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान।

अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीत कार्यक्रम लोक माधुरी में, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 5 बजने वाले हैं। आइए चलते हैं हिंदी में समाचार के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। आइए सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा

आज गोपियां अपने दिल की बात बोल रही हैं कन्हैया से। ओरे कन्हैया, क्यों सताता है, क्यों रुलाता है इतनी मधुर मुरली,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं सखियों का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज के इस घर आंगन कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी विनीता सिंह और घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली आप सभी सखियों का आपके प्रिय कार्यक्रम घर आंगन में बहुत बहुत स्वागत है। सखियों, जब हम सब बच्चे थे तो कई सारे भाई बहन होते थे। हम सब उस पीढ़ी के बच्चे थे, जब हम छोटे थे तो दो चार भाई बहन तो हम होते ही थे, और साथ में चाचा ताऊ के बच्चों को मिलाकर बहुत सारे भाई बहन हो जाते थे। एक ही परिवार में संयुक्त परिवार होता था और हम सब कई सारे भाई बहन होते थे जो खूब मस्ती करते थे, खेलते थे। और हमें घर में जो कुछ भी मिलता था, खाने पीने की चीज़ें घर में बनी हुई और घर की चीज़ें, वो हम बड़े ही प्यार से, बड़े ही खेल खेल में, बड़े ही उत्साह से खा लिया करते थे। चाहे वो दूध मलाई मिश्री रबड़ी हो, चाहे फल मेवा मिष्ठान हो, चाहे तरह तरह के व्यंजन हो, साग सब्जी कुछ भी, खट्टा मीठा तीता जो मिलता था, शुद्ध स्वच्छ भारतीय व्यंजन खाना हम बड़े ही चाव से खाते थे। और सब चीज़ हम भाई बहन मिल बाँट कर खाते थे, बड़ा आनंद आता था। और घर परिवार में कई सारे बच्चे होते थे, साथ में बैठकर खाने में खूब कंपटीशन होता था। सखियों, आपको तो याद ही होगा अपना बचपना, कितना भाइयों में, भाई बहनों में कंपटीशन होता था, लड़ाइयाँ हो जाती थी, पहले कौन खाया, किसने खाया, अपना सारा खाना किसने पहले ख़त्म किया। और इसमें माता पिता को बच्चों को खिलाने के लिए या उनके पीछे मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ता था। और ऐसे ही खेल खेल में हम सब बच्चे घर की बनी हुई शुद्ध स्वच्छ पौष्टिक संतुलित आहार, तरह तरह के व्यंजन जो बनते थे खाते रहते थे। और उस समय तो बाहरी खाने पीने की जो चीज़ें होती थी वो हमें दर्शन भी हमें नहीं मिलता था, ना हमें उतना चलन ही था।

पैकेज्ड फूड का, फास्ट फूड का उस समय चलन भी नहीं था, हम बच्चों को उतना मिलता भी नहीं था उस समय, इतना सारा नहीं जैसे आजकल है। लेकिन आजकल के दौर में एक या दो बच्चे होते हैं कल परिवार में, वो खाने के मामले में बहुत चूजी होते हैं, और ऊपर से आजकल पैकेज्ड फूड, बिस्किट, चॉकलेट, फास्ट फूड वगैरह, ये सब नुकसान वाले खाने पीने की चीज़ें आसपास बहुत होते हैं, जिससे बच्चे स्वस्थ या कहिए कि पोषण से भरपूर जो हमारे भारतीय आहार हैं उनको खाने पीने उतना खाने पीना नहीं चाहते हैं, जिद करते हैं बाहरी चीज़ खाने के लिए, उन्हें खाना उतना पसंद नहीं करते हैं। माता पिता को स्वस्थ संतुलित पौष्टिक आहार बच्चों को खिलाना, बढ़ते हुए बच्चों को खिलाना बहुत टफ टास्क हो गया है, यानी कठिन काम है। और हम सबके बचपन में ये सब चीज़ें मिलती ही नहीं थी, आसानी से भी मिलती नहीं थी, तो हम सब तो जो घर का मिलता था बड़े ही प्यार से खाते थे। और आजकल कदम कदम पर ये सब चीज़ें मिल रही हैं बाहरी चीज़ें, तो बच्चे उसी का जिद करते हैं। इसलिए आजकल के बच्चे घर का पौष्टिक चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि बच्चों के हर तरह के विकास के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए पोषण से भरपूर खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के गर्भावस्था में आने से लेकर, यानी जब कोई महिला माँ बनती है तो गर्भावस्था से लेकर जन्म होने के तुरंत बाद 6 महीने तक तो बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं, वही उनका सबसे संतुलित पौष्टिक हर तरह से स्वस्थ आहार है। और 6 महीने के बाद जब बच्चा थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करता है तो सुपाच्य हल्का भोजन उसको उबाल करके और मैश करके हम दे सकते हैं। और उसके बाद 1 वर्ष 2 वर्ष के उम्र से हम बच्चे को हर चीज़ जो हमारे घरों में बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी फल मिष्ठान सब कुछ खिला सकते हैं, तो मक्खन मिश्री हर चीज़ खिला सकते हैं, जो उसके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, शारीरिक मानसिक विकास के लिए अच्छा होता है। और इन सारे खाना में जो बच्चों को हम खिलाते हैं उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, आयरन, विटामिन से ये जो भोजन होता है ये भरपूर होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो हमारी मांसपेशियों के, यानी हमारे बच्चों के, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 साल तक जो बढ़ने का उनका क्रम होता है शारीरिक विकास के समय और मानसिक विकास के समय, प्रोटीन से भरपूर आहार जो मांसपेशियों मजबूत करती हैं, हड्डियाँ मजबूत करती हैं, तो उसके लिए प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और ये सारे चीज़ें दाल दूध दही पनीर चीज़ अंडे मछली इन सब चीज़ों में मिलती हैं, तो ये बच्चों को हम रेगुलर खिलाएं बदल बदल करके, तो चना है, फलियां हैं तरह तरह की, तो इनसे भरपूर प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाती है। और कैल्शियम जब मिलती है तो ये हड्डियों को मजबूत करता है बच्चों के, और हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके साथ साथ आयरन के लिए, यानी जो बच्चों को हम खिला रहे हैं दिन भर उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, ये ऊर्जा देता है, एनर्जी, ओट्स दलिया तरह तरह के अनाज दाल चावल। आयरन के लिए ये खून की कमी को रोकता है, बच्चों का दिमाग तेज करता है, तो पालक सेब अनार हरी मटर ये सब चीज़ें बच्चों को खिलाइए, ब्रोकली वगैरह। विटामिन्स और मिनरल्स के लिए जो बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रंग बिरंगे फल सब्जियां सूखे मेवे तरह तरह के, हमारे देश में सखियों इतने तरह के फल सब्जियां सूखे मेवे हैं, अनाज इतने तरह के हैं कि अगर हम उसको बदल बदल कर तरह तरह के भिन्न भिन्न व्यंजन बनाकर बच्चों को खिलाएं तो बच्चों के शरीर में हर तरह का पोषण मिलेगा। और इसके साथ ही साथ सखियाँ बच्चों को पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, चिप्स और बहुत सारी मीठी मीठी जो चीज़ें होती हैं चीनी से भरपूर, उनको ना दें, क्योंकि ये बच्चों के लिए या किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो अगर हम माएँ ठान लें कि अपने बच्चों को हम पोषण से भरपूर स्वस्थ आहार कराएंगे तो ये कोई कठिन काम नहीं है, और हम माएँ अगर चाहें तो बचपन से ही बच्चों में इन सब चीज़ों को खाने की आदत डाल दें। और बच्चे अगर खाना नहीं खाते हैं तो अगर हम उनको कहानियाँ सुनाएं तो कहानियाँ सुनने के चक्कर में बच्चे जो भी हम खिलाएंगे वो खा लेंगे, फिर वो बाहरी चीज़ खाने की जिद नहीं करेंगे। तो हम माँ भी बहुत होशियार हैं, बहुत चतुर चालाक हैं कि हम बच्चों को कैसे अच्छी चीज़ें सही चीज़ें खाने की आदत डाल सकते हैं, कहानियाँ सुना करके लोरियाँ सुना करके बच्चों को खिलाएं, तरह तरह से

रंग बिरंगा बना करके दे करके खिलाएं तो उससे बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं और खाते हैं। तो इस तरह हम बच्चों को, बढ़ते हुए बच्चों को, घर परिवार में जो हमारे बच्चे पल बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको हम इस तरह से अगर स्वस्थ आहार कराएंगे तो उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा। और सखियों, अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं, चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सखियों, हम सब जब बच्चे थे तो अपने दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे। हम उस पीढ़ी के बच्चे थे जो बिना कहानी सुने सोया ही नहीं करते थे। एक अलग ही आनंद मिलता था कहानी सुनने का। कभी कभी हम बच्चे आधी कहानी सुनकर ही सो जाया करते थे और सुबह उठने पर फिर पूछते थे क्या हुआ कहानी पे। तो हमारी जो दादी होती थी या नानी होती थी, हमारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे जिनसे हम कहानी सुनते थे, वो हमें बड़े प्यार से समझाते थे कि दिन में कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, मामा रास्ता भूल जाएंगे। और हम कहते थे, और वे हमसे कहते थे कि रात में ही कहानी पूरा करेंगे, यानी छुट्टी हुई कहानी रात में सुनाएंगे। और हम भोले भाले बच्चे ये बात मान जाते थे कि हाँ, दिन में अगर कहानी सुनेंगे तो मामा रास्ता भूल जाएंगे। और हम बच्चे फिर बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करते थे। एक अलग ही रोमांच होता था इन सब बातों का, हमारी लाइफ का। आज के समय में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है। इसकी वजह से ना कहानी सुनाने वाले लोग

में अगर कहानी सुनेंगे तो मामा रास्ता भूल जाएंगे, और हम बच्चे फिर बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करते थे। एक अलग ही रोमांच होता था इन सब बातों का, हमारी लाइफ का। आज के समय में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है, इसकी वजह से ना कहानी सुनाने वाले लोग रह गए हैं, ना ही कहानी सुनने में दिलचस्पी रखने वाले बच्चे। उसका कारण ये भी है कि अब ना संयुक्त परिवार रह गए हैं, ना परिवार में बड़े बुज़ुर्ग रह गए हैं कि जो कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग का भी इंटरटेनमेंट होता था बच्चों के साथ समय बिताने में, और बच्चों का भी दादा दादी के साथ, चाचा ताऊ के साथ बैठ के कहानी सुनने में, बात करने में उनका भी मनोरंजन होता था। तो इस तरीके से बच्चों में और बुज़ुर्गों में एक सामंजस्य बनता था, एक रिश्तों का बंधन बंधता था। और वैसे तो आजकल के बच्चे कहानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से के माध्यम से सुन लेते हैं, क्योंकि हमने बताया कि अब संयुक्त परिवार भी नहीं रह गया, और बड़े बुज़ुर्ग कहानी सुनाने में और बच्चों के साथ समय बिताने में, बड़े बुज़ुर्ग फैमिली में, बहुत सारे फैमिली में बड़े बुज़ुर्ग हैं ही नहीं, एकल परिवार है, माता पिता हैं, और उनकी इतनी व्यस्तता है कि उनके पास कहानियाँ सुनाने का समय नहीं है। तो इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बच्चे कहानी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन वो जो नानी और दादी के मुंह से जो कहानी सुनकर, उनसे चिपटकर, लिपटकर, उनके साथ सोकर, गर्माहट और रिश्तों भावनाओं के बंधन में बच्चे बंधते थे, वो बात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि जो सारी टीवी, मोबाइल, जिससे भी कहानियां बच्चे सुनते हैं, वो बात नहीं है उस चीज़ में, वो बात कहाँ है। सखियों, हमारे देश में या हमारे समाज में तमाम ऐसे महान पुरुष और स्त्रियां हुई हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने बचपन में अपनी माँ दादी से कहानियां सुनकर वो बड़े हुए हैं, और इसी के कारण वो महान व्यक्तित्व विराट पाए भी हैं। और आप तो जानती ही हैं सखियां कि पहले जब दादी नानी कहानियां सुनाती थीं तो एक से एक महान चरित्र के बारे में कहानियां सुनाती थीं, जो कहानियां बड़ी ही प्रेरणादायक होती थीं। माँ जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को कहानियाँ सुनाकर बड़ा की, उनका पालन पोषण की, और उसका अमिट छाप शिवाजी महाराज के पूरे जीवन पर पड़ा। उन कहानियों का ही योगदान था या कहीं असर था कि वह एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी बने, एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी बनकर महान शासक हुए और हिंदवी स्वराज की नींव रखी, पूरे दक्षिण भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया, मराठी साम्राज्य की स्थापना की, बहुत ही महान शासक हुए। तो ये होता है कहानी सुनाने का असर। जिस प्रकार की आप कहानियाँ बच्चों को सुनाएंगी, बच्चे उन कहानियों में खो जाते हैं, उसी तरह का परिकल्पना करते हैं। और जब भी हम बच्चों को कहानियाँ सुनाएं तो प्रेरक कहानियाँ सुनाएं, महान विराट व्यक्तित्व की कहानियाँ सुनाएं, ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिससे बच्चे प्रेरणा लें। बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियाँ, उन कहानियों को सुनकर बच्चे वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारे महापुरुष होते हैं या जिस भी चरित्र, महान बड़े चरित्र के बारे में हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को सुनाते हैं, उनके त्याग, बलिदान, बुद्धिमत्ता, शौर्य, साहस, वीरता के बारे में जानकर बच्चे सुनकर उनसे प्रेरणा लेते हैं, और उन महान विभूतियों के बारे में जानकर बच्चे उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, उस करेक्टर से अपने आप को जोड़ लेते हैं, उस चरित्र से। और सबसे बड़ा असर ये होता है सखियाँ कि बच्चे जब कहानी सुनते हैं, जैसा कहानी सुनते हैं, उस तरह की कल्पना शक्ति वो करते हैं, उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे कहानी सुनकर। तो ये होता है कहानी सुनाने का, एक तो एक बहुत ही आत्मीय रिश्ता बनता है, जो घर की जो बड़ी पीढ़ी होती, पुरानी पीढ़ी होती दादा दादी की, और न्यू पीढ़ी जो बच्चों की होती है, उनमें एक प्रगाढ़ संबंध बनता है। और इससे ना बुज़ुर्ग उपेक्षित होते हैं, ना बुज़ुर्ग को अकेलापन होता है, और ना बच्चों को वो महसूस होता है, बच्चों को भी अपनापन मिलता है। तो एक बड़ा गहरा रिश्ता चलता है बच्चों में और बुज़ुर्गों में। तो ये सबके लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, घर परिवार के लिए। तो हम क्यों ना अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, और जैसा अपने बच्चे को हम चाहते हैं कि भविष्य में वैसा बने, उस टाइप की कहानियाँ सुनाएं। तो ये होता है कहानी सुनाने का असर। तो
तो हम ज़रूर सुनाएं टाइम निकाल।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से

0: प्राप्त कर सकते हैं।
1: सखियों, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम साझा करते हैं आपसे ये जानकारी, और वो जानकारी है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, यानी ये कानून जो माता पिता के लिए बनाया गया है। तो ये कानून ये कहता है सखियों कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 भारत सरकार का एक कानूनी सुरक्षा अधिकार है बुजुर्गों के कल्याण के लिए। ये कानून 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को उनके बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा बुनियादी ज़रूरतों भरण पोषण और चिकित्सा देखभाल से वंचित, यानी जो बच्चे उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, उनका देखभाल नहीं कर रहे हैं, उससे वंचित कर रहे हैं, किए जाने पर कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। भरण पोषण का अर्थ है सखियों भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और बच्चों की देखभाल से। और इस कानून की मदद से वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या कानूनी वारिसों, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वारिस हैं, उनसे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। निसंतान वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर किसी बुजुर्ग को संतान नहीं है तो वो अपने उन रिश्तेदारों से भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं जो उनकी संपत्ति के वारिस हैं या उत्तराधिकारी हैं। और अगर कोई बच्चा अपने बुजुर्ग का देखभाल नहीं करता है तो इसके बाद भी किसी वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर छोड़ दिया जाता है, उपेक्षित, परित्याग कर दिया जाता है या अलग थलग करने पर अपराध अगर सिद्ध होता है तो 3 महीने तक की जेल और 5,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है, यानी दंड और सजा दोनों मिल सकता है उस संतान को जो अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करते हैं। और ये भी नियम है सखियाँ कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक, यानी हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति इस शर्त पर ट्रांसफ़र कर दी है, यानी अपने बच्चों के नाम कर दी है कि उनकी देखभाल करेंगे, और बाद में बच्चे उनकी उपेक्षा करते हैं, संपत्ति ले लिए, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र रद्द माना जाएगा, यानी वो संपत्ति जो बुजुर्ग ने लिखा है अपने बच्चों को वो रद्द हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी बुजुर्ग के साथ, किसी वरिष्ठ जन के साथ, वयोवृद्ध के साथ अगर ये परेशानी हो रही है कि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वे शिकायत कर सकते हैं आवेदन देकर। जो पीड़ित हैं, यानी जो बुजुर्ग जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो खुद शिकायत कर सकते हैं या उनके ओर से कोई भी, ऐसा कानून में है कि कोई अन्य व्यक्ति पंजीकृत कल्याणकारी संगठन यानी ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है। और ट्रिब्यूनल जो बुजुर्गों के कल्याण के लिए बनाया गया है, वो स्वयं स्वतः संज्ञान लेकर के मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद भी संज्ञान ले सकता है। यानी अगर ट्रिब्यूनल के जानकारी में आया कि कहीं के बुजुर्ग को उनके बच्चे जो है परित्याग कर दिए हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो स्वतः संज्ञान लेकर के भी वो मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। और कहाँ बुजुर्ग शिकायत कर सकते हैं अपनी भरण पोषण के लिए, तो वो जो है प्रत्येक ज़िले में ऐसी व्यवस्था है जो बुजुर्ग कर सकते हैं, और इस तरीके से बुजुर्ग अपने कल्याण के लिए मदद ले सकते हैं। और इसी जानकारी के साथ सखियों, अब अपनी सहेली विनीता सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। सखियों, नमस्कार।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ डॉक्टर निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। भाजपा के वरिष्ठ नेता और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नया ऊंचाइयन के छुअता। वो कहलन कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सबसे लंबा कार्यकाल के रिकॉर्ड बनौले बाड़े, जे जनता के विश्वास के प्रमाण बा। श्री चौधरी मोदी सरकार के 12 साल पूरा होके पर पटना में आयोजित मीडिया संवाद के संबोधित करत रहलन। श्री चौधरी कहलन कि भारतीय जनता पार्टी जे भी संकल्प जनता के सामने रखलस ओकरा पूरा करे के प्रयास कैलस। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के खत्म करे के पार्टी के ऐतिहासिक प्रतिबद्धता रहल, जेकरा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा कैल गइल बा। एकरा अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के सपना भी पूरा भइल। श्री चौधरी कहलन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन कार्यकाल में बिहार के विकास खातिर अपन प्रतिबद्धता दिखौलन, जौना कारण राज्य आज प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहल बा। केंद्र सरकार संस्थागत औद्योगिक आ व्यावसायिक ग्राहकन के खुदरा विक्रेता लोग से मोटर ईंधन आ हाई स्पीड डीजल खरीदे पर रोक लगा देले बा। ये फैसला पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आयल बाधा के बीच स्थानीय स्तर पर तेल के कमी के रोके खातिर लिहल गइल बा। पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्रालय एगो अधिसूचना में कहलस कि ई प्रतिबंध 90 दिन तक लागू रही। एनटी

माने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आगामी 21 जून के होए वाला नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परीक्षा समय के 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट कर देले बा। नया समय दुपहरिया 2 बजे से सांझ 5:15 बजे तक रही। संशोधित परीक्षा समय में जरूरी परीक्षा औपचारिकता खातिर लागल समय शामिल बा। संगे संगे एजेंसी प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथे दिहल जावे वाला रफ वर्कशीट के 2 पन्ना से बढ़ा के 4 पन्ना कर देले बिया। केंद्र सरकार प्याज के खरीद दर के संशोधित करके 1,650 रुपया प्रति क्विंटल कर देले बिया। उपभोक्ता मामले खाद्य आ सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में ई जानकारी देले बाड़न। बेगूसराय जिला के बखड्डा स्थित NH 31 पर भइल सड़क हादसा में मधेपुरा जिला के 3 गो थाना प्रभारी समेत 4 लोग के मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार बतौलें कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात 4 पहिया गाड़ी के अनियंत्रित होके ट्रक से टकराए के चलते ई हादसा भइल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हादसा में 3 थानाध्यक्ष समेत 4 आदमी के निधन पर गहरा दुख जतौले मारे। भारतीय निशानेबाज आ एशियाई खेलन में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा के आज नई दिल्ली के एगो अस्पताल में 49 बरिस के उम्र में निधन हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा के निधन पर गहरा दुख जतौलन सन। मुजफ्फरपुर के एगो निजी अस्पताल में पिछला दिनन भइल भीषण आगलगी मामला के जांच खातिर बनल उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट में कई गो गड़बड़ी सामने आयल बा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बतौलें कि अस्पताल भवन के निर्माण स्वीकृत नक्शा के मुताबिक ना भइल रहे। वो कहलें कि ई मामला में नगर निगम अस्पताल प्रबंधन के नोटिस भेजले बा। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बा। दुनिया भर में छोट छोट लइकन से काम करावे के प्रथा के खत्म करे आ सब लोगन के एकरा प्रति जागरूक करे के उद्देश्य से ई दिवस मनावल जाला। ए साल ई दिवस के थीम बा बाल मजदूरी के रेड कार्ड, लइकन खातिर निष्पक्ष खेल, सयाना लोग खातिर सम्मानजनक काम। बाल श्रम निषेध दिवस के मौका पर पूरा प्रदेश में कई गो जागरूकता कार्यक्रम कैल जा रहल बा। प्रदेश में मानसून के असर से बरखा के माहौल बनल बा। मौसम विभाग कहले बा कि अगला 2 दिन के भीतर मानसून के फैलाव राज्य के ज्यादातर हिस्सा में हो जाए। विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा में कटिहार जिला में भारी बूंदी पड़ल बा। जिला के प्राणपुर में सबसे बेसी 82.8 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कैल गई। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:10 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार। देखिए श्रोता भाई, आज के दिन बहुते महत्वपूर्ण दिन बा। काहे नू कि आज 12 जून है। आज के दिन के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनावल जाला। जावना के उद्देश्य बा कि हमनी के गांव घर में जे भी लड़का मजदूरी करता ओकरा खिलाफ हमनी के अपना गांव आ समाज में जागरूकता फैलावल जाओ। हर बच्चा के शिक्षा के अधिकार दिहल जाओ आ सुरक्षित ओकर बचपन के अधिकार ओकरा के लौटावल जाओ। इहे

आज जवन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बा एकर उद्देश्य बा। आ देखी जवन लइकन के बचपन के जवन सपना बा ओकरा सपना के उड़ान भरी आ ओकरा के मजदूरी करे वाला काम से छुट्टी दिलवाई। देखी कहल भी गइल बा कि पढ़े लिखे के उम्र में जे हो जाला मजबूर, ओह मासूम के जीवन में से खुशी होला कोसो दूर। ई बच्चा देश के भविष्य बाड़न। देखी श्रोता भाई, ई बच्चा जवन बाड़न देश के भविष्य बाड़न। मत कराई मजदूर, इनका शिक्षा खातिर रउरा कदम बढ़ाई भरपूर। इस तरह से हमनी के जे भी बालक बा गांव में 14 साल से कम उम्र के जे भी लड़का बा, यदि वो मजदूरी में लागल बढ़न तो ओकरा के हमनी के कोशिश कर जाओ कि मजदूरी उनका से ना कराल जाओ। देखी श्रोता भाई, हमनी के कानून के हिसाब से या सामाजिक हिसाब से बाल मजदूरी जौन बा एगो कानूनी आ सामाजिक अपराध मानल जाला। एकरा के नियम बनावल बा कि जे भी आदमी 14 साल से कम उम्र के लड़कन से मजदूरी करे हन उनका खातिर सजा के नियम भी बनावल गेल बा, जवना में कि जे भी बाल श्रम कराई ओकरा खातिर 6 महीना से लेके 2 बरिस तक के जेल हो सकेला। आ एकरा साथे साथे 20,000 रुपया से 50,000 रुपया तक उनका पर आर्थिक दंड भी लगावल जा सकेला। तो जवन की बाल श्रम अधिनियम 1986 से ही लागू भइल बा। अगर कोई भी बाल मजदूरी करावत होके तो हमनी के गांव घर में जे भी बानी ई हमनी के जिम्मेवारी बा कि राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1998 जौन टोल फ्री नंबर बा एकरा पर कॉल करके रउरा शिकायत कर सकीना। तो देखी हमनी के सामाजिक आ नैतिक ई जिम्मेवारी बा कि जौन भी छोट छोट लइकन से यदि कोई मजदूरी करावता, या बहुत जगह हमनी के देखी न जा कि हमनी के जमना होटल में नाश्ता पानी करे जाई न जा, वह दुकान पर जूठा जौन प्लेट बा ओकरा खातिर लोग छोट छोट बच्चन के दुकान पर रख देला, ऐसे कि मजदूरी हमरा कम देवे के पड़ी। तो देखी एह में हमनी के अपना से थोड़ा एगो समझदारी होके चाहिए कि वो लइकन के समझी कि पढ़े के उम्र बा, वो लइकन के रउरा समझा बुझा के पढ़े के ओर अग्रसर करी। आ ओकरा के जौन बा समझा बुझा के रउरा ओकरा मन में शिक्षा के दीपक जलाई, जवना से कि ओकर जीवन में प्रकाश फैल सके। तो एह तरह से हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि जे भी गांव में मजदूरी करता ओकरा के हमनी के रोकल जाओ। इतने ना कहीं कहीं हमनी के ईंट भाठा बा या कहीं पत्थर के जहाँ काम होला ओजा देखल जाला कि छोट छोट बच्चन से लोग समझी कि मजदूरी करावेला। तो देखी हमनी के गांव में जे भी समझदार आदमी बा ई आदमी के हमनी के जिम्मेवारी बा कि हमनी के अपना पर ई भार लिहल जाओ कि हमनी के जे भी देखल जाओ छोट छोट बच्चा के मजदूरी करत ओकरा मन में पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैलावल जाओ आ ओकरा के समझी के ओकर बचपन के ओ मजदूरी से आज़ाद करके ओकरा के जीवन के जवन सपना बा ओकरा के साकार कर जाओ, ओकरा के भी पढ़े लिखे के अधिकार दिहल जाओ। आज जवन समझी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बा एह दिन इहे संकल्प लेबे के जरूरत बा। तो देखी हमनी के आई अपना कुछ मन मन साइन कर जाओ। तो एकरा खातिर आई हमनी के खूब नीमन एगो लोक भजन सुनतन जा, एह लोक भजन के कलाकार बानी मनोरंजन ओझा, ताई हमनी के लोकगीत सुनल जाओ, ओकरा बाद हमनी के बातचीत कैली।

देखी श्रोता भाई कितना निमन लोकगीत लागल आ इतना निमन लोकगीत सुनावला खातिर मनोरंजन ओझा के बहुत बहुत धन्यवाद। देखी हमनी के जीवन में मनोरंजन भी करे के चाही, कारण है कि आदमी के कभी कभी काम करत करत थकान हो जाला आ मनोरंजन एगो ऐसा चीज़ है कि आदमी के मियाँ जौन बा प्रफुल्लित हो जाला, मन मियाज खुश हो जाला। तो ऐसे भी हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि अपना जीवन में हर तरह के मनोरंजन के आनंद लिया जाओ। देखी अब चले कि हमनी के एगो भेंट वार्ता सुनत नहीं जा कि पुनर्वास नीति आ कानून का बा, एकरा खातिर हमनी के भेंट वार्ताकार बानी हीरेंद्र कुमार सिन्हा आ यहाँ से भेंट कैले बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। तो आई हमनी के ई भेंट वार्ता सुन लिया, एकरा बाद हमनी के बातचीत कैली।

0: श्रोता भाइयों और बहनों, पुनर्वास नीति और कानून यह हमारी सरकार द्वारा बनाया गया है और इसकी ज़रूरत समय समय पर हम लोगों को भी पड़ती है। कहीं कोई बांध बन रहा हो या कोई ऐसी आपदा आ जाती हो, उसके बाद विस्थापन की ज़रूरत पड़ती है, बसने की ज़रूरत पड़ती है और इस संबंध में कानून बनाया गया है हमारी सरकार के द्वारा और इसमें समय समय पर संशोधन भी होते रहता है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है वरीय अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय सासाराम श्री हीरेंद्र कुमार सिन्हा जी को और इनसे हम लोग जानेंगे कि पुनर्वास नीति और कानून क्या है, इससे हम लोगों को क्या लाभ मिल सकता है। तो हीरेंद्र कुमार सिन्हा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि पुनर्वास का अर्थ क्या होता है?
1: जी, पुनर्वास का शाब्दिक अर्थ होता है पुनःवास अर्थात दोबारा वास। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति को दोबारा या पुनःवास की व्यवस्था किया जाना।
0: जी जी।
1: जिसका पूर्ववास किन्हीं कारणों से विनष्ट हो गया हो या उस व्यक्ति को किसी कारणवश अपना पुराना वास स्थान छोड़ देना पड़ा हो। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अगर किन्हीं कारणों से कोई व्यक्ति अपने पुराने आवास से विस्थापित हो गया हो,
0: जी जी,
1: तब सरकार का यह फर्ज बनता है कि सरकार उसे पुनर्वासित करे। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्वास का सीधा संबंध विस्थापन से है, क्योंकि अगर विस्थापन नहीं होगा तो पुनर्वास का की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
0: अच्छा, तो विस्थापन किन किन कारणों से हो सकता है?
1: देखिए, विस्थापन के विषय में सबसे पहले सरकार को पुनर्वास नीति बनाने की आवश्यकता उस समय पड़ी जब हमारे देश का बंटवारा सन 1947 में हो गया।
0: जी जी।
1: तो हमारे देश का कुछ भाग ऐसे देश में चला गया जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय लोग भारत में आना पसंद किए और भारत में आने लगे।
0: जी जी।
1: जिन्हें उस समय शरणार्थी कहा गया।
0: जी जी।
1: तो शरणार्थी को शरण देना सरकार का फर्ज था।
0: जी।
1: तो चूंकि वो पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आ रहे थे, इसलिए सबसे पहले सरकार ने उन लोगों के संबंध में यह कानून बनाया जिसका नाम हुआ विस्थापित रैयत पुनर्वास अधिनियम 1950।
0: जी।
1: और यह कानून 23 नवंबर 1950 को बिहार प्रांत में लागू हुआ और उसी समय से अभी तक यह चला रहा है, जिसमें सरकार आवश्यकता अनुसार समय समय पर संशोधन करके अभी तक इसको चला रही है।
0: अच्छा अच्छा। नहीं, हीरेंद्र कुमार सिन्हा जी, हमारा प्रश्न था कि विस्थापन के क्या कारण हो सकते, जैसे कि एक कारण आपने बताया कि देश का बंटवारा हुआ वैसी स्थिति में हो सकता है, या फिर आपदा वगैरह कोई आती है वैसी स्थिति में हो सकता है, और या फिर हम लोगों को अगर विकास कोई कार्य हो रहा है, सड़क बन रही हो, कोई फैक्ट्री बन रही हो या कोई बांध बनाया जा रहा हो, वैसी स्थिति में हो सकता है। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके पहले भी कोई कानून था, अंग्रेजी राज्य में भी कोई कानून था क्या इसके पहले?
1: जी हाँ, अंग्रेजी राज्य में भी कानून था। वो सन 1894 में बना। उस कानून का नाम था भूमि अर्जन अधिनियम।
0: जी।
1: तो अभी जो आपने कहा कि विस्थापन किन किन कारणों से हो सकता है, तो प्राकृतिक आपदा के तौर पर दो मुख्य कारण इसके होते हैं, या तो भूकंप से कोई विस्थापित हो जाए।
0: जी जी।
1: या बाढ़ से विस्थापित हो जाए।
0: हाँ।
1: या अभी जो सरकार की तरफ से जो पूरे देश में विकास का कार्य चल रहा है
0: जी।
1: उसके तहत सड़क बनाए जा रहे हैं, पुल बनाया जा रहा है या और भी उद्योग में बैठाया जा रहा है।
0: जी जी।
1: तो उसके लिए भी काफी भूमि की प्रतिभूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसके लिए कोई भी भूमि हो उससे तो कोई ना कोई रैयत संबंधित है उससे।
0: जी जी।
1: तो जितनी जमीन की सरकार को आवश्यकता होती है वह सरकार वह भूमि अर्जित कर लेती है अपने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत जो अंग्रेजों के शासनकाल से चला आ रहा है।
0: जी।
1: और उस कानून के तहत भूमि अर्जन करने के बाद सरकार उस रैयत को उसका उचित मुआवजा देती है और जो रैयत उस जमीन से विस्थापित हो जाता है उसको बसने के लिए भी उसकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर मुआवजा से उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है तो उसको उसके बदले में जमीन भी दी जाती है। अगर उसका मकान भी ले लिया गया है, उसको विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको पुनर्वास भी कराया जाता है।
0: अच्छा, जहाँ तक जो आपने कहा कि अर्जन जो नीति है सरकार की, तो वो किसी भी व्यक्ति की जमीन वो ले सकती है?
1: जहाँ उसमें कोई संदेह नहीं है, सरकार को जहाँ भी जरूरत पड़े किसी भी जमीन की, जिस जमीन को उसको

0: जरूरत पड़ेगी, चाहे वह जमीन किसी भी व्यक्ति की हो, खेत हो, मकान हो, कुछ भी हो, सरकार उसे ले सकती है। सरकार को, सरकार इसमें सक्षम है, उसको अधिकार है, कानून में ऐसा प्रावधान बनाया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में भी यह सरकार को आदेश अधिकार है, और यह जो कानून बना 1950 में उसके तहत भी सरकार को यह अधिकार है।
1: तो मुआवजा इसमें किस, क्या प्रक्रिया होती है देने की?
0: जी हाँ, जी हाँ, यह बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मुआवजा देने का एक मापदंड होता है। सरकार ने भी अपने ऊपर कुछ इस तरह का कानून बनाया है कि सरकार पर भी अंकुश रहे, क्योंकि मुआवजा देना कोई मनमाना काम नहीं है। उसके लिए एक मापदंड है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई ग्रीन बेल्ट में की जमीन अर्जित की गई। ग्रीन बेल्ट का मतलब हमारा यह है कि जहाँ खेती बाड़ी होती हो,
1: जी जी,
0: जहाँ दोनों फसलें उगाई जाती हों, अगर वैसी ज़मीन कोई अर्जित की जाती है तो उस क्षेत्र की मौजूदा स्थिति जो होती है, जो मूल्य होता है रजिस्ट्री ऑफिस में, जिस रेट से ज़मीन बिक्री होती है उसी रेट से उनको दाम देना पड़ता है, या अगर कोई ऐसी ज़मीन अर्जित की जाती है जो व्यावसायिक क्षेत्र हो तो वहाँ उससे भी अधिक, उसका एक मापदंड सरकार ने एक निर्धारित कर दिया है कि इस जगह की ज़मीन की कीमत ये होगी, फलाने जगह की ज़मीन की कीमत ये होगी, तो उसी नीति के तहत, उसी निर्धारण के तहत सरकार कीमत देती है।
1: अच्छा, अगर मान लीजिए कि किसी का मकान बन गया है तो मकान का कैसे तय होता है वैल्यूएशन? हाँ,
0: उसके लिए सरकार की तरफ से वैल्यूअर होते हैं, मूल्यांकन करने वाले जो सरकारी व्यक्ति होते हैं, और उनको वहाँ पर नियुक्ति होती है यह देखने के लिए, यह असेसमेंट करने के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि इस मकान को बनाने में भूमि की कीमत के अलावे मटेरियल की कीमत मिला जुला करके यह मकान जिस हालत में अर्जित किया गया है उस हालत तक उस मकान को पहुंचाने में उनका कितना खर्च लगा होगा, ये पूरा दाम सरकार दे देती है।
1: अच्छा, अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे श्रोता किसी को अगर विस्थापित होने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको क्या, किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और कैसे वो लाभ उठा सकते हैं इस कानून का?
0: जी हाँ, पहले तो सरकार को जिस ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और सरकार को अगर किसी रैयत को विस्थापित करना पड़ता है तो सरकार पहले उनको नोटिस देती है कि आपके इस प्रति ज़मीन की या आपके मकान, जिस ज़मीन पर आपका मकान स्थित है उस ज़मीन की हमको ज़रूरत है, तो वैसी स्थिति में एक नोटिस से उसको सूचना दी जाती है कि इस ज़मीन की हमको ज़रूरत है, और फिर उस व्यक्ति से भी स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपकी ज़मीन अगर अर्जित कर ली जाए तो आपको मुआवजा दिया जाएगा, यह आपको मंजूर है या नहीं है, अगर मंजूर नहीं है तो किन कारणों से मंजूर आपको नहीं है, ऐसी कारण परीक्षा उनसे मांगी जाती है, और कारण परीक्षा मांगने के बाद सरकार उस पर विचार करती है, उनकी सुनवाई करती है, और सुनवाई के बाद सरकार यह तय करती है कि इस ज़मीन से सरकार जिस उद्देश्य से अर्जित करना चाहती है वह सरकार का उद्देश्य उस ज़मीन से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं पूरा हो रहा है तो सरकार उसको छोड़ देती है, और अगर पूरा होता है तो सरकार उसको अर्जित कर लेती है, और फिर मुआवजा के लिए उनको एक नोटिस देती है कि इतना मुआवजा आपके लिए तय हुआ है। तो मुआवजा पर भी रैयत का को यह अधिकार मिला हुआ है कानून के तहत कि अगर मुआवजा में वो यह समझते हैं कि वह हमको बाज़ार दर से कम मिल रहा है तो उस पर भी वो एतराज़ करते हैं, और अंततः न्यायालय से यह निर्धारित होता है कि उनको मुआवजा कितना मिलना चाहिए।
1: अच्छा, हीरेंद्र कुमार सिन्हा जी, आम धारणा है कि मुआवजा सरकार के द्वारा नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत लेट मिलता है, तब तक बाजार मूल्य बहुत बढ़ गया होता है, तो ऐसी स्थिति में आम लोग क्या करें?
0: देखिए, यह जो धारणा है अभी इस समय तो हम यह नहीं समझते हैं कि ऐसी धारणा अगर किसी के दिमाग में है तो वह सही है, बल्कि हकीकत यह है कि सरकार इस समय जो मुआवजा दे रही है वो हम समझते हैं कि बाजार मूल्य से भी अधिक मुआवजा दे रही है। अभी दृष्टांत के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि सासाराम आरा जो रेलवे स्टेशन का, रेलवे लाइन का जो निर्माण हुआ उसमें जो भी मुआवजा रैयत को दिया गया वो उनके बाजार मूल्य से भी अधिक दिया गया, जिससे रैयतों में कोई असंतोष नहीं है। उन लोगों को जो, अगर वो बिक्री करने से जो कीमत उन लोगों को मिलती उससे अधिक उन लोगों को मिल रहा है, और वो बहुत सहर्ष उस मुआवजा को स्वीकार कर रहे हैं।
1: जी,
0: वैसे कुछ मुकदमे में न्यायालय में जरूर लंबित हैं, लेकिन अब न्यायालय की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि, और इतने ज़्यादा केस न्यायालय में है कि थोड़ा सा विलम्ब तो होगा ही, लेकिन जहाँ तक मुआवजा राशि का सवाल है सरकार कम नहीं दे रही है।
1: अच्छा अच्छा, तो हीरेंद्र कुमार सिन्हा जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: देखिए श्रोता भाई, कितना निमन लागल हमनी के कि पुनर्वास नीति आ कानून पर हमनी के भेंटवार्ता सुननी जा। एकरा खातिर हीरेंद्र कुमार सिन्हा के बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से बात कैली डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, यहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखी हमनी

0: के आई थोड़ा संदेश सुन लिया, ओकरा बाद हमनी के एक जानकारी के तहत परिवार पर ध्यान देवे के बात सोचल जाए।
1: इस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
1: तो बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
0: देखी श्रोता भाई, कहल जला कि परिवार एगो ऐसन पाठशाला है जवना में कि हमनी के अपना जीवन के सब कुछ पहले ही सीखी न जा। एक तरह से देखा जाओ तो परिवार ही सामाजिक जीवन के पहला पाठशाला होला, जवना पाठशाला में आदमी अपना माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आ दादा दादी से अनुशासन आ भाईचारा आ आपसी प्रेम के पाठ पढ़ेला। जवन कि ई हमनी के सीखल जवन भाईचारा होला, प्रेम होला, एकरा से पूरा हमनी के बोली चाली सीखी न जा, परिवार में ही उठे बैठे के तरीका सीखी न जा आ सामाजिक व्यवहार के भी ज्ञान हमनी के एह परिवार से ही मिलेला। जवन कि समझी कि पूरा जीवन भर ई हमनी के जीवन के पहचान बन जाला। यदि हमनी के परिवार में बढ़िया संस्कार मिल गई तो पूरा जीवन भर खातिर आदमी के मुहर लाग जाला कि देखी ई बहुत बढ़िया आदमी हवन, इनकर बहुत बढ़िया व्यवहार बा, इतना एकर महत्व होला। तो हमनी के सबसे महत्वपूर्ण ई परिवार बा। ऐसे एह परिवार के हमनी के सजा के आ संवार के रखे के चाहिए। एकरा में कौनो कोई से गलती हो जाओ तो ओकरा पर भी हमनी के ध्यान ना देवे के चाहिए। आ परिवार के बनावे खातिर हमनी के अपना से कौनो कसूर ना छोड़े के चाहिए। एह परिवार पर हमनी के विशेष ध्यान देवे के चाहिए। कारण कि जब हमनी के परिवार ठीक ठाक रही तो ओकरा से का हुई कि हमनी के आवे वाला दिन में जौन हमनी के बाल बच्चा हुई हन ओकर पहचान भी हमनी के परिवार से ही मिली। तो हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि अपना परिवार पर भरपूर रूप से ध्यान दिहल जाओ। एकरा खातिर जब भी रउरा काम से अपना आई तो समझी कि अपना परिवार में बैठी आ इतने ना परिवार के भावनात्मक रूप से रउरा जुड़ाव रखी। आ परिवार के प्राथमिकता पर भी हमनी के ध्यान देवे के चाहिए कि मान ली कि कोई परिवार में कोई के तबीयत खराब बा आ उ यदि गार्जियन से कहत रहन तो ओकरा पर नज़रअंदाज ना करे के चाहिए। एकरा से क्या होला कि परिवार में बिखराव होला या वो आदमी के मन में लागेला कि देखा हमार बात कोई सुनत नहीं के। तो परिवार के रिश्ता के मजबूत बनावल भी हमनी के जरूरी बा। परिवार पर ध्यान देवे खातिर हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि हमनी के अपना परिवार में एक साथे बैठल जाओ, एक साथे बैठ के ही भोजन कर जाओ आ छोट छोट जौन बातचीत बा ये भी अपना में साझा कर जाओ। इतने ना देखी हमनी के परिवार में खुल के बातचीत करे के चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन रखे के चाहिए। परिवार के सदस्य के साथ हमनी के विचार आ भावना इस साझा करे के चाहिए। कभी हर आदमी के जीवन में कभी सुख दुख, कभी बाहर के परेशानी आदमी के जीवन में आवेत रहला तो एकरा के का करे के चाहिए कि हमनी के परिवार में भी ओकरा के साझा करे के चाहिए। परिवार के सदस्य से बतावे के चाहिए कि हम हे परेशानी में बानी या हे उलझन में बानी, तो परिवार वो स्थिति में रुरा के मदद कर सकेला। देखिए श्रोता भाई, हालांकि पहले परिवार जौन रहे संयुक्त परिवार ज़्यादा चलत रहे, जाना में कि चाचा चाची माता पिता सब कोई रहत रहे। आ ई परिवार जौन रहे हर आदमी के सुख बा तो कोई बात नहीं के, लेकिन दुख के समय बहुत ज़्यादे मदद करत रहे आ एक दूसरा के ओकरा से जौन दुख पड़त रहे वो कमजोर पड़ जात रहे। लेकिन आज के समय में लोग सेल्फी ज़्यादे हो गई बा, मतलब सोचता कि हम ही आपन जौन बेटा बढ़न वह हमार बेटा बढ़न भाई बहू बढ़न, इतने में मतलब एकल परिवार बन के आज के समाज रह गई बा। तो यह परिवार में भी हमने कोशिश करे के चाहिए कि हमने के आप

उसमें प्रेम आ भाईचारा बना के रखल जाओ ताकि परिवार हमर चलत रहे आ परिवार के भविष्य बन रहे। कारण कि जौन भी आज के राउर बाल बच्चा बढ़न एकरे पर उनकर पूरा जीवन टिकल बा आ राउर भी जौन आसरा बा ये परिवारे पर बा तो कोशिश करे के चाहिए कि हमनी के परिवार के कोई भी सदस्य कोई भी सामाजिक बुराई में मत फंसस बल्कि उ जीवन में सफल होकस ताकि गांव समाज में उनकर नाम होके आ उनकर भविष्य बने। देखी अब चले के हमनी के थोड़ा अपन खेती बाड़ी में देखी श्रोता भाई अभी जौन मौसम बा यह मौसम के हिसाब से कहीं कहीं जिला में गरज के साथ पानी आ आंधी भी आ सकेला। एकरा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चल सकेला। कहीं कहीं हल्का बारिश भी हो सकेला। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। एकरा में हमनी के बहुत सा किसान भाई ऐसन बानी जौन कि अभी धान के बिचड़ा वाला काम खेती में लागल बानी तो देखी एकरा में फसल संबंधी विशेष सलाह हमनी के किसान भाई खातिर ई बा कि लंबी अवधि वाला धान के किस्म जैसे सबौर भइल या श्री भइल सवर्णा या सब वन रायश्री बा राजेंद्र मंसूरी बा राजेंद्र श्वेता बा या राजेंद्र कस्तूरी बा ई पौधा के नर्सरी में जब रूरा डाली तो गोबर के जौन ओमे मात्रा बा ओकरा में खाद के भी व्यवहार करी। नर्सरी में क्यारी जौन बा एकर चौड़ाई 1.25 से लेकर के 1.50 मीटर तथा लंबाई के सुविधा अनुसार प्रति हेक्टेयर रोपाई खाती 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी रूरा तैयार कर सकिना। बीज के व्यवस्था जौन करेक बरूरा प्रमाणित स्रोत से ही बीज लेबे के कोशिश करी आ जब भी धान के बीज लीही तो ओकरा पहले ओकरा के बीजोपचार जरूर कर दी। हमनी के अभी गाँव घर में बहुत सा किसान भाई मक्का के भी खेती करे के फेरा में लागल बनी या कुछ आदमी करतनी तो मक्का के अभी बुआई करे के समय चल रहा बा। एक खातिर खेत के जोताई करके 10 से 15 टन गोबर के सड़ल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से हमनी के खेत में डाल देवे के चाहिए। मक्का बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर 23 किलो नेत्रजन 60 किलोग्राम स्फुर आ 50 किलोग्राम पोटास के व्यवहार करे के चाहिए। मक्का खातिर यदि निमन किस्म के बात कही जाओ तो एक में अच्छा किस्म में सुवान बा देवकी बा शक्तिमान वन बा शक्तिमान टू बा आ राजेंद्र शंकर मक्का 3 ई मक्का के मुख्य रूप से किस्म बा। एमे पशुपालन संबंधी विशेष सलाह हमनी के किसान भाई खाती ये बा कि अभी के मौसम में गलाघोटू आ लंगड़ी रोग चल रहल बा एकरा बचाव करे खाती हमनी के दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करावे के चाहिए। एकरा में भूसा खियावे से पहले करीब 2 घंटा पानी में फुला देवे के चाहिए आ 50 ग्राम खनिज मिश्रण आ 50 ग्राम नमक चारा में जरूर हमें के देवे के चाहिए। तो इस तरह से देखी श्रोता भाई अब इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार आ अब स्टूडियो के घड़ी और अधिक कुछ कहे के इजाज़त निखे देत चलत चलत सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम गांव घर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत।

बिटिया सदा सुहागन रहा इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और पामेला जैन की आवाज़ों में। श्याम जी श्याम का लिखा ये गीत था, अमन श्लोक का संगीत था। आइए सुनते हैं अगला गीत, भाई होखे था ऐसन, इस फिल्म से उदित नारायण और कल्पना की आवाज़ों में अगला गीत, विनय बिहारी के बोल, राजेश गुप्ता का संगीत।

जरूर कौनो बात बा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुजीत कुमार चौबे और प्रिया भट्टाचार्य से। सुजीत कुमार चौबे का लिखा गीत और संगीत दोनों ही था। अगला गीत अब आइए आपको सुनवा रहे हैं इंदु सोनाली की आवाज़ में इरशाद खान का लिखा गीत, अगम ओमकार का संगीत और फिल्म है हमार सैया दरोगा।

दुल्हा गंगा पार के इस फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार थे लक्ष्मण शाहवादी और संगीतकार भी लक्ष्मण शाहवादी ही थे। अगला गीत आइए सुनते हैं बेटी भैल परदेसी फिल्म से उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। फणीन्द्र राव का लिखा ये गीत है, सुनील छैला बिहारी का संगीत है।

श्रोताओं, बेटी भैल परदेसी इस फिल्म के खूबसूरत गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास में। जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार सभी 19 प्रखंडों में 2 दिवसीय जन कल्याण शिविर आवेदन से लाभ वितरण तक होगी सुविधा। आज दिनांक 12 जून 2026 को समाहरणालय रोहतास के DRDA सभागार में जिला पदाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर के सफल आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति एवं लाभार्थियों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से दिनांक 17 और 18 जून 2026 को जिले के सभी 19 प्रखंडों में एक साथ प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन निबंधन सत्यापन EKYC लंबित प्रकरणों के निष्पादन तथा लाभ वितरण की कार्रवाई की जाएगी। शिविर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लखपति दीदी योजना PM स्वनिधि योजना किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एवं छात्रवृत्ति योजनाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना दिव्यांगजन कल्याण योजनाएं बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड BOCW की योजनाएं मुख्यमंत्री स्वयं सहायता

भत्ता योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शिविर के सफल संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक योजना के लिए पृथक काउंटर स्थापित करने तथा प्रत्येक काउंटर के लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने शिविर स्थल पर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षित स्वयंसेवक की एवं कर्मी लाभार्थियों को सही काउंटर तक पहुंचाने, आवेदन प्रपत्र भरने तथा आवश्यक दस्तावेजीकरण में सहयोग प्रदान करेंगे। जिला पदाधिकारी ने शिविर स्थल पर मेडिकल स्टॉल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। मेडिकल स्टॉल में प्राथमिक स्वास्थ्य जांच जैसे रक्तचाप, शुगर परीक्षण एवं स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा उपलब्ध रहेंगी। बैठक में सभी प्रखंडों में शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार ग्राम पंचायत स्तर तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही लाभार्थियों को यह जानकारी पूर्व से उपलब्ध कराने को कहा गया कि वे शिविर में भाग लेने के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लाएं, ताकि आवेदन, निबंधन एवं लाभ वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सभी BPRO उपस्थित थे। और श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, दम लगा के हैसा फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। वरुण ग्रोवर का लिखा ये गीत है, अनु मलिक का संगीत है। तो आइए सुनते हैं दम लगा के हैसा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

दम लगा के हैसा फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत को लिखा था वरुण ग्रोवर ने और संगीत था अनु मलिक का। और श्रोता इसी के साथ सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास, और श्रोताओं आइए आपको चलते हैं लेकर प्रादेशिक समाचार के लिए आकाशवाणी के पटना केंद्र।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए
2: नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है बेगूसराय जिले के पखट्टा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम 2 लोगों की गिरफ्तारी कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त और मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश अब समाचार विस्तार से भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है जो जनता के विश्वास का प्रमाण है श्री चौधरी मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पटना में आयोजित मीडिया संवाद को संबोधित कर रहे थे
3: आज लगभग 12 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हुए हैं साथियों और 12 साल के इतिहास में मैं सर्वप्रथम उनको बधाई भी देता हूं कि आज इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में जब से आजादी मिली और लोकतंत्र स्थापित हुआ 1952 में तब से सबसे लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं
2: श्री चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करना भाजपा की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना भी पूरा हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई राज्य को विभिन्न मदों में 12,90,000 करोड़ रुपए की सहायता और आवंटन मिला श्री चौधरी ने बताया कि राजगीर और मुंगेर में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की योजना है जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के

0: अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक वर्ष में 5,00,000 करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में लगातार प्रगति हो रही है।
1: बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब एनडीए सरकार का एक साल पूरा होगा तो लगभग 5,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम, इसकी व्यवस्था पर हम लोग चिंता कर रहे
0: हैं। राज्य के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर श्री चौधरी ने कहा कि वित्तीय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार नियोजित तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। केंद्र सरकार ने प्याज के खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: AIR at 90. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात चार पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने के चलते हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि मधेपुरा जिले के अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलाड़ी थानाध्यक्ष नीरज कुमार तथा रतवारा थानाध्यक्ष साजन कुमार और कार चालक की मौत हो गई। सभी पुलिसकर्मी पटना से वापस लौट रहे थे।
1: देर रात में ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोग की दुखद मृत्यु हुई। इसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स मधेपुरा पुलिस के सर्विंग SHOs और एक जो ड्राइवर थे उस गाड़ी से लौट रहे थे, उसका एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत हाईवे पे। उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। गाड़ी पटना से होते ही मतलब मधेपुरा की तरफ जा रही है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में 3 थानाध्यक्षों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। बेगूसराय में 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश नाकाम हुई है। तकनीकी शाखा और पकड़ी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए परीक्षा में सेटिंग कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि छापेमारी कर आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश रोशन और दुलार चंद यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ डिवाइस लगा चप्पल, मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, चार्जर तथा कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र समेत अन्य उपकरण जब्त किए हैं। इससे पहले बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में भी धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जांच की जा रही है।
2: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो हैं वो स्कॉलर हैं, कुछ जो हैं वो अभ्यर्थी हैं। इन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
0: मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में कई अनियमितता सामने आई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

0: हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार जिले में भारी बारिश हुई है। जिले के प्राणपुर में सबसे अधिक 82.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के जिलों एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: राजधानी पटना में बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल का चौथा वार्षिक अधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। दो दिवसीय इस अधिवेशन में देश विदेश के कई जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। भोजपुर जिले के धनगाई थाना क्षेत्र अंतर्गत महोरही ओवरब्रिज के पास से उत्पाद विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने एक ट्रक से 1,35,00,000 रुपए मूल्य की शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत। 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, 2 लोगों की गिरफ्तारी, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हमारे संवाददाता कमल किशोर।
1: औरंगाबाद जिले में चालू खरीफ मौसम में धान की खेती के लिए विभाग और किसानों के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में इस वर्ष 1,72,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को धान की खेती के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। इसी क्रम में बीते दिनों खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि धान का अधिकाधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए किसानों को हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने कहा कि धान की खेती के लिए किसानों को खाद, बीज और अन्य आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध

0: करते हुए जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि धान का अधिकाधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए किसानों को हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने कहा कि धान की खेती के लिए किसानों को खाद, बीज और अन्य आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय राजनीति के समकालीन इतिहास में पिछले 12 वर्षों को ऐसे दौर के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसमें सत्ता, सुशासन, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुधार और तकनीकी परिवर्तन के अनेक अध्याय एक साथ लिखे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक बने रहने का रिकॉर्ड स्थापित करने पर एनडीए के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक प्रमोद कुमार सिंह, त्रिविक्रम नारायण सिंह, प्रकाश चंद्रा तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं कृष्ण बल्लभ सिंह बबुआ जी, अनिल कुमार सिंह और सतीश कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत पूरा भारत विकास के पथ पर अग्रसर है तथा देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एनटीपीसी की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालिका सशक्तिकरण अभियान का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन सीआईएसएफ के आईजी प्रबोध चंद्र, एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक और परियोजना प्रमुख एलके बेहरा तथा स्वरा महिला क्लब की अध्यक्ष आरती बेहरा ने किया। इस अभियान के तहत चयनित 61 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहीं भारतीय रेल बिजली कंपनी की ओर से बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत 40 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक प्रेरक प्रयास साबित होगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को पार्टी के ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीते दिनों श्री चंद्रवंशी औरंगाबाद जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। श्री चंद्रवंशी ने बताया कि वे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचा रहे हैं ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को भी इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने 9 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर औरंगाबाद पटना सड़क को 4 लेन बनाने, जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शीघ्र कराने तथा उत्तर कोयल नहर परियोजना के कार्यों में तेजी लाकर किसानों को सिंचाई का लाभ जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के सचिवों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं रफीगंज से जदयू विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य योजनाओं को तेजी से लागू करने का अनुरोध किया। औरंगाबाद डाल्टनगंज पथ पर बटाने नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का परिचालन बंद है। इससे आम यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक आवागमन के लिए डायवर्सन निर्माण की दिशा में पहल की है ताकि जल्द से जल्द सामान्य यातायात बहाल किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। औरंगाबाद जिले में अपराध नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रात्रि गश्त तथा वाहन जांच अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अमरीश राहुल के मार्गदर्शन में सभी थाना क्षेत्रों में लोक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। औरंगाबाद की जिला पार्षद नीतू सिंह तथा कुटुम्बा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासन, जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: इफमेंट के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में और श्रोताओं, आपके भेजे हुए प्यारे प्यारे ईमेल्स में फरमाइशें हमने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। पहला ईमेल मैसेज आया है नागिन फिल्म के लिए और ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया, जिला गाजीपुर, यूपी से।

0: जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से हैं बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, स्टेशन रोड जमानिया से हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनय जायसवाल और इनका पूरा परिवार। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर नागिन फिल्म का गीत। और कुछ और मैसेज ले लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। ये हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता राधा नामदेव, संजय ढिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन, तो इनको भी हम सुनवा रहे हैं। नागिन फिल्म का है ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, आइए सुने।
1: मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
2: विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
3: हम ये कैसे मान सकते हैं यार?
4: कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: ऐसे लोग चांद
3: पर सच को झूठ में नहीं बदल सकते।

0: और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
1: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
2: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर ना देख सके।
2: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलिए।
3: श्रोताओं आइए सुनते हैं दोस्ती फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं, और कुछ और मैसेज है जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। और ये हमारे श्रोता है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, शारदा गुप्ता, ऐश बाग लखनऊ से है रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि, नीलम, कुसुम, शांति और रूपा। तो चलिए इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है तो आप सभी सुनिए दोस्ती फिल्म का ये गीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म से। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का ये गीत, जिसे सुनना चाहा है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, अरुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े ने। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। ये श्रोता है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से हैं, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से हैं, अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। तो चलिए आप सभी सुनिए पूर्णिमा फिल्म का अगला गीत।

श्रोताओं भाई ये सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हीर रांझा फिल्म का गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और इनका पूरा परिवार। तो चलिए आप सभी को आपकी पसंद का गीत हीर रांझा का सुनवा रहे हैं। कुछ और मैसेज ले लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। और ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश, रमेश गौण, मोहम्मद सादाब खत्री और इनके सभी दोस्त। तो चलिए सुनते हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत।

ही रांझा फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे आप सबों की पसंद पर। अब आइए सुनते अगला गीत मन्ना डे की आवाज में सफर फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली खूबचंद वर्मा। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत सफर फिल्म से हम सुनवा रहे हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है, और ये श्रोता है नजमुल होदा, एसिम जावेद, औषा गुप्ता, अंजुम गुमला झारखंड से। तो चलिए इनको भी हम सुनवा रहे हैं सफर फिल्म का ही ये गीत मन्ना डे की आवाज में।

सफर फिल्म का ये गीत था, मन्ना डे की आवाज थी। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अगला गीत हीरा पन्ना फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता जो कि हैं

हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। और आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिल से। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में इस गीत को सुनना चाहते हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत। तो चलिए आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है और ये हैं ततरेंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा रुद्र वर्मा इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी सुनिए दिल फिल्म का ही ये खूबसूरत गीत।

दिल फिल्म का ये खूबसूरत गीत सुन रहे हैं और श्रोताओं अब आइए सुनते हैं अगला गीत, यशुदास की आवाज़ में मान अभिमान फिल्म का गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल मैसेज भेजा है कार्तिक आर्यन मुजफ्फरपुर से। तो कार्तिक आर्यन जी, आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं मान अभिमान फिल्म से। एक और मैसेज ले लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है, और ये हैं श्रोता नगर निगम वार्ड नंबर 23 नाज मंजिल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, मारिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम शर्मा कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान। तो चलिए आप सभी सुनिए मान अभिमान फिल्म का गीत यशुदास की आवाज़ में।

मान अभिमान फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत यसुदास की आवाज़ में हम सभी ने सुना। अब आइए सुनते हैं पाकीज़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। और कुछ और मैसेज ले लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। आप हैं गांव लोहगढ़ ठांकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, इन्होंने लिखा है कोई भी गीत सुनाने के लिए। तो चलिए आप भी सुनिए पाकीज़ा फिल्म का ही नगमा। और ये हमारे श्रोता हैं नागाचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, इन्होंने भी कोई भी गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी सुनिए पाकीज़ा फिल्म का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: और श्रोताओं, पाकीज़ा फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही प्रोग्राम ई मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए चलते हैं समाचार संध्या के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना

वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए

0: गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप

0: जम्मू, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

धरणीधर शुक्ला और साथियों से अभी आप सुन रहे थे ये भोजपुरी लोकगीत, और इसी के साथ लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम बंदगी का। इसमें आज हम सुनेंगे कव्वाली साजिद और सज्जन बाबू से, तो आइए सुनें।

0: जाते हैं बंदे गजब से उसके डर, पल में कर सकता है दुनिया को वही जेरो जबर।
1: वो खुदाए पाक है बंदे गजब से उसके डर, पल में कर सकता है दुनिया को वही जेरो जबर। आज

0: शर वरना कर देगा खुदा पल में तुझे जेरो जबर।
1: एक सहारा है तुझे तौबा का, तौबा कर बशर, वरना कर देगा खुदा पल में तुझे जेरो जबर।
0: तेरी सबासा इश्क का सामान होगा फर्श पर,

0: और श्रोताओं, इसी के साथ ये कार्यक्रम बंदगी अब यहीं संपन्न होता है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से हम सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण।
1: नमस्कार श्रोताओं, हिंदी रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रानू सिंह। श्रोताओं, अपनी इस पत्रिका के द्वारा हम साहित्य की विशेषताओं की चर्चा आपसे करते हैं और आज भी हम ये करने जा रहे हैं। श्रोताओं, जब भी बात साहित्य की होती है, संवेदना स्वयं वहां अपना स्थान बना लेती है। संवेदना, अधिकतर लोगों को यही लगता है कि यह दुर्बलता का प्रतीक है, परंतु संवेदना आपको दुर्बल नहीं बनाती। प्रायः यह विचार आता है कि अधिक संवेदनशील व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, वे निर्णय व्यावहारिक होकर नहीं ले पाते, परंतु सत्य यह है कि भावुक होते हुए यदि आप किसी परिस्थिति में निर्णय ले पाते हैं, तो आप अपने भीतर किसी प्रकार के अपराध बोध में जीवित नहीं रहते। आप भावुक हैं, अर्थात आप सबकी भावना को समझते हैं और अंततः आप कोई ठोस निर्णय लेते हैं। इसलिए संवेदनशील होना आपकी दुर्बलता नहीं, आपके भीतर की शक्ति को प्रदर्शित करता है। आज के समय में जहां एक सड़क पर कोई घटना हो जाए, तो इंसान पहले मोबाइल फोन निकालकर उसे अपने कैमरे में सुरक्षित करने के लिए तत्पर हो जाता है, बिना ये सोचे कि इस परिस्थिति में उसका दायित्व क्या है। ये संवेदनहीनता का प्रमाण बनता है। श्रोताओं, आज की दुनिया इतनी स्वार्थी होती जा रही है कि किसी की सहायता करने के पूर्व भी हम हानि और लाभ का विचार अपने मस्तिष्क में ले आते हैं। यदि ऐसे समय में साहित्य के अध्ययन से हम में संवेदना जागृत होती है, तो इसमें हमारा ही लाभ है। तो श्रोताओं, ऐसी बातें हम करते रहेंगे। यहाँ समय हो चला है संपादकीय का। श्रोताओं, आज के संपादकीय में हम आपसे एक ऐसी साहित्यकार की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं, जिनकी रचना ने विश्व मंच पर हिंदी को अपनी पहचान दिलाई। वह पहचान जो समय के साथ थोड़ी धुंध अपने ऊपर लपेट ली थी, उस धुंध को उन्होंने अपनी स्याह से साफ कर दिया। इतना साफ कि उसकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशा में होने लगी। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की विजेता गीतांजलि श्री की। आपको बता दें, यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली हिंदी लेखिका हैं, जिन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जो हर साल अंग्रेजी में अनुदित हुई किताब को दिया जाता है। इसके लिए कुछ नियम हैं कि किताब किसी भी भाषा में लिखी हो सकती है, पर अंग्रेजी अनुवाद यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होनी चाहिए। श्रोताओं, जब विश्व स्तरीय मंच पर हिंदी रचना की प्रशंसा होती है, तो यह हम भारतीयों के लिए भी गर्व का विषय बन जाता है। साथ ही साथ ऐसे क्षण हिंदी के महत्व का अनुभव कराते हैं, हिंदी में पढ़ने लिखने वालों को प्रेरणा देते हैं कि वे इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गीतांजलि श्री का जन्म 12 जून 1957 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ। दिल्ली में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और अध्यापन के कार्य में जुड़ गईं। अध्यापन करते हुए उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। उनकी पहली कहानी बेलपात्र थी, जो कि हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लिखना उन्हें बहुत प्रिय था और लगभग 1990 से वे निरंतर लिखना प्रारंभ कर चुकी थी। उनकी हर रचना कुछ नवीनता लिए पाठकों के बीच उपस्थित होती। उनका पहला उपन्यास माई माँ बेटी के संबंध में छुपे कई अनगिनत पर्दों को खोलती है, तो उनके द्वारा रचित हमारा शहर उस बरस बाबरी मस्जिद के बाद

0: दिल्ली के दीवारों पर पड़ी दरारों को दिखाती है। उनके उपन्यास खाली जगह ने बम विस्फोट और उसके बाद होने वाली त्रासदी का काल्पनिक और यथार्थवादी चित्रण किया है, जो कि मर्मांतक है। उनका उपन्यास रेत समाधि 80 साल की एक अम्मा पर केंद्रित है, जो अपना बचपन ढूंढने पाकिस्तान जाती है। इसे उन्होंने बिल्कुल वैसे लिखा है जैसे वो स्वयं वहां हों। वे इसकी चिंता ही नहीं करती कि साहित्य के कुछ मानक भी हैं। वे बस अपने विचारों के साथ बहती चली जाती हैं, भाषा को जब जहां चाहती तोड़ती हैं, मरोड़ती हैं, लय में शब्दों को इकट्ठा करती हैं और एक ऐसा चित्र तैयार करती हैं जो एकदम नया है, जिसकी कल्पना बिंदु तक पहुंचना भी असंभव है। गीतांजलि श्री एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने साहित्य को स्वतंत्र रूप में स्वीकार किया है। किसी भी बंधन में उन्हें विचारों का बंधना स्वीकार नहीं। साहित्य बिल्कुल हमारे हृदय समान होता है, कभी चंचल तो कभी अडिग। एक रूपता इसकी पहचान नहीं, बल्कि इसकी पहचान है इसकी विविधता। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे संपादकीय। संपादकीय के बाद अब समय हो चुका है जरा सोचिएगा। श्रोताओं, हमारे माता पिता हमें बहुत स्नेह करते हैं। उनका ये प्रयास रहता है कि वे अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। परंतु आज इसमें एक समस्या आ गई है। अपने काम के कारण या कोई निजी समस्यावश लोग अपने परिवार से दूर हो गए हैं। कुछ लोगों को यह स्वतंत्रता का आभास कराता है, क्योंकि ऐसे में ना वो किसी का रोकना टोकना सुनते हैं और ना ही दूसरों की समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। परंतु ये सदा के लिए सही नहीं है। जिसे हम स्वतंत्रता का नाम दे रहे हैं, वह वास्तविकता में हमें अकेलेपन का आदि बनाता जा रहा है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे संबंधों को समझना भूलते जा रहे हैं, दादा दादी नाना नानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इन संबंधों की सुंदरता से वे दूर हो रहे हैं। उनके भीतर संयम नहीं आ रहा, जो कि उनके भविष्य के लिए गलत है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वे एक अच्छे इंसान बने, तो हमें हमारे बुजुर्गों से अपने बच्चों का स्नेह बढ़ाना होगा, जिसकी पहल हमें ही करनी होगी। जरा सोची के बाद अब समय है आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने की। तो आइए सुनते हैं संजीव कुमार आलोक से उनकी कहानी खट्टा मीठा।
1: रानी आज काफी उदास थी, मानो ऐसा जैसे वह दया की पात्र बन गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अधीर और उसके रिश्ते एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि उसके चाहने से भी यह रिश्ता टूट नहीं पाएगा। वह मन ही मन अधीर को अपना सब कुछ मान चुकी थी, लेकिन उसमें इतनी साहस नहीं थी कि वह आगे बढ़ सकती थी। वह अपने प्यार का इजहार अधीर से नहीं कर पाई। वह मन ही मन कह उठी, अधीर, मैं कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं? पर क्या तुम भी मुझसे प्रेम करते हो या नहीं, यह मुझे पता नहीं। वहीं अधीर भी रानी के साथ बिताया हुआ उस बचपन को नहीं भूल पाया था। खुशी के दिन एक साथ बिताए थे। उन दोनों के दिलों में बचपन की यादों में खट्टा मीठापन है, खेल की मस्ती है। बचपन से दोनों एक दूसरे के खुशी के लिए जीते रहे हैं। देखते देखते दोनों कब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, यह दोनों को पता ही नहीं चला। आज वे दिन दूर जा चुके हैं, लेकिन उस समय मन की स्लेट पर बने रानी की वह भावुक भोली मूरत अभी तक अधीर के दिल में ज्यों की त्यों है। अधीर कभी भी उसे नहीं भूल सका। मन में यादों को समेट वह दौड़ रहा था। उम्र का गणित अपने अपने तरीके से हल करने का प्रयत्न कर रहे थे। आज बहुत अरसे के बाद किसी काम से अधीर का बाढ़ आना हुआ था। बचपन की एक एक यादें उसे याद आने लगी। रानी के साथ बिताए उन पलों को याद कर अधीर के मन को थोड़ा सुकून मिल रहा था। आज भी अधीर रानी के साथ बिताए उन पलों को भूल नहीं पाया था। यादों में दिन कब बीत गया अधीर को यह पता ही नहीं चला। शाम को अधीर गंगा किनारे घूमने निकल गया। गंगा की रेत पर वह धीरे धीरे पांव बढ़ा रहा था। तभी मानो उसकी नज़रों ने ऐसा महसूस किया कि कुछ दूरी पर चल रही वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रानी है। यह महसूस कर अधीर के पांव खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे

आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे वह रानी ही है, ऐसा अधीर को विश्वास होने लगा। स्थान और समय को भूलकर अधीर चिल्लाया, रानी! वह ठहर गई, धीरे से पीछे मुड़ी। वह रानी ही थी। उसे देखकर ऐसा लगा मानो अधीर बचपन में लौट आया है। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। खुशी की लहरों को वह संभाल नहीं सकी। कितने दिनों बाद दिखे हो, कहाँ रहते हो? एक सांस में वह सब कुछ कह गई। आजकल मैं पटना में रहता हूँ, किसी काम से बाढ़ आया था, मैंने हंसकर जवाब दिया। चलो यह अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। मैं आश्चर्यचकित रह गया और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। रानी, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझा, आखिर तुम किस मंजिल की बात कर रही हो? तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो गई, तुमने जो चाहा वह तुम्हें मिला। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने मेरे गालों पर एक साथ कई तमाचे रसीद कर दिए हो। उसकी व्यंग भरी बातों का शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने भी हंसते हुए कहा, पैसा से खुशी नहीं खरीदी जा सकती रानी। आज भले मेरे पास धन दौलत और शोहरत है, पर दिल पर जो जख्म है उसे आज तक ठीक नहीं कर सका। फिर यह धन दौलत मेरे किस काम का है? अधीर, यह सवाल खुद से पूछो, आखिर इन सब बातों का जिम्मेवार कौन है? हाँ हाँ मानता हूँ, इन सब के लिए तुम मुझे जिम्मेवार ठहरा रही हो। मानता हूँ कि उस समय के जो हालात थे उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सका। जात पात, ऊंच नीच, इस समाज की देन है। यह समाज इंसान इंसान को बांट दिया है। मेरे घर वाले हम दोनों की शादी को तैयार नहीं हुए थे, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें और इस शहर को छोड़कर दूर जाना पड़ गया। लेकिन तुम्हारी यादों को आज भी दिल में बसाए जी रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वह एकदम रोने ही लगी। मैंने धीरे धीरे उसके रोने का कारण जान लिया। उसकी बातों से मैं व्यथित हो गया। मैं ही दोषी हूँ, यह सोचकर मेरा मन मुझे कचोटने लगा। मुझ में उसकी तरफ देखा नहीं गया। उसके साथ बिताए हुए लम्हे मेरी आंखों के सामने तैरने लगी। उनका यह आश्रय था, तेरे ही कारण हुआ, तू ही दोषी है। मेरा मन घबराया, मैं बेचैन हो गया। मुझसे यह सहन नहीं हो रहा था। आखिर मन में पक्का निश्चय करके मैंने कहा, रानी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह आश्चर्य से मेरी ओर देखती हुई चौंकी, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा, मेरी दृष्टि में उसे सत्य का दर्शन हुआ, फिर भी वह चुप रही। मैंने उसकी चुप्पी तोड़ी, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? जो गलती मुझसे हुई है उसे अब मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। बातें भरोसे की नहीं अधीर, यह पाखंड समाज हम दोनों को एक नहीं होने देगी। तुम जैसा सोचते हो, जैसा कह रहे हो, यह संभव नहीं है। रानी, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। गलती तो उन हैवानों को जिसने तुम्हारे साथ, फिर सजा की हकदार तुम नहीं, वह हैवान है जिन्होंने तुम्हारे साथ हैवानियत की। पाखंडी समाज को अगर सजा देनी है तो वह तुम्हें नहीं, उन हैवानों को दे। उन्हें समाज से बहिष्कृत करें। मेरे मन का सुशिक्षित विवेकशील मानव जाग गया। उसने मुझे वहां से भागने नहीं दिया। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार रानी को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया वालों से लड़ना क्यों ना पड़े। पर रानी ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर मिलने का वादा कर वहां से चली जाना चाहती थी, जबकि मैंने मन में ही उसे अपनाने का फैसला कर लिया था। फिर आज उसकी दिल की बात जाने बिना कैसे जाने देता? मैं फिर बोल पड़ा, मेरे सवाल का यह जवाब नहीं है रानी। मैं जानती हूँ तुम जो जवाब सुनना चाहते हो वह मेरी आत्मा जवाब देना नहीं चाहती। मैं तुम्हें अपने दुख के सागर में डुबोना नहीं चाहती। तुम क्यों अपनी जिंदगी मेरे खातिर बर्बाद कर देना चाहते हो? जिस तरह पहले तुम मुंह मोड़कर चले गए थे, आज भी मेरी जिंदगी से चले जाओ। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अपना भी लोगे तो यह समाज तुम्हारे और मेरे पीठ पीछे तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगी।

0: समाज उन हैवानों को गलत नहीं मानती, बल्कि वह मुझे बदचलन कहते हैं। बोलो, क्या तुम एक बदचलन लड़की के पति कहलाना पसंद करोगे? इसलिए मैं कह रही हूं, तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। रानी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि काश यह हिम्मत मुझ में पहले आई होती तो शायद आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। अब मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लोग क्या सोचेंगे या उनकी अपनी सोच है, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता हूं। लेकिन हाँ, तुमसे शादी कर समाज के लोगों पर एक तमाचा रसीद जरूर कर सकता हूं कि तुम जैसी लड़की को भी एक नई जिंदगी शुरू करने का अधिकार है। पर अधीर, दुनिया वाले को नहीं जानते, जिस जग को मैं भूलने का प्रयास कर रही हूं उसे तुम मुझसे शादी करके क्यों ताजा कर देना चाहते हो? मुझ जैसी लड़की को शादी करने का अधिकार इस समाज ने नहीं दिया है। तुम इसकी चिंता मत करो, बस शादी के लिए हाँ कर दो। इस पाखंडी समाज के लोगों को जवाब देने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। बस मेरे दिल के जख्मों पर अपनी रजामंदी की हाँ से घाव को भर दो। हम दोनों कल ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरी जिद भरी बातें सुनकर रानी धीरे से बोली, तुम बिल्कुल पागल हो, और शादी के लिए हामी भर दी। उसकी स्वीकृति पाकर मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और लोगों की भीड़ में उसे गले लगा लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे आज मुझे मेरी असली मंजिल मिल गई।
1: समाज को एक सही दिशा दिखाती हुई कहानी खट्टा मीठा अभी हम सुन रहे थे संजीव कुमार आलोक के द्वारा। इस कहानी के बाद अब समय है कि हम थोड़ा कविताओं का आनंद लें। तो आइए सुनते हैं विनोद कुमार चौधरी से उनकी कुछ कविताएं।
2: मेरी पहली कविता है पार्क की घास। प्रतिदिन कुचला जाता हूं मैं नए नए आगंतुकों से, उनके किस्म किस्म के जूतों चप्पलों से, जाने कैसे कैसे कदकाठी के लोग कुछ अत्यंत भारी मेरे सीने को रौंदते चले जाते हैं। मैं उनका नाम भी नहीं जानता और जाने कितने आए और कि चले गए, मैं उन्हें पहचानता तक नहीं। कितने बच्चे मुझ पर धमाचौकड़ी करते रहते हैं और प्रेमी जोड़े तो अक्सर मेरे देह पर ही लेट जाते हैं। मैं उनके बदन की गर्मी महसूस करता हूँ, प्रेम में तपिश लिए उनके बदन सारे, और कई बार तो मुझे चादरों से ढककर पिकनिक मनाते लोगों को मेरे दम घुटने का अंदाज़ा तक नहीं होता। मैं थक जाता हूँ इस सप्ताह भर की लगातार लोगों की चर्या से, आपाधापी और बेचैन आहटों से, सूरज की किरणें और बरसात के थपेड़ों से भी मैं उतना क्लांत नहीं होता जितना कि इन मानवीय कृत्यों से। मैं चीखना चाहता हूँ इस उत्पात के विरुद्ध, मैं चीखना चाहता हूँ इस उत्पात के विरुद्ध, पर विवश हूँ, पार्क की घास हूँ। मेरी यही नियति है और कोई पगडंडी पर उगी हुई दूब नहीं या पहाड़ पर पनपी हुई जंगली विस्तार नहीं, मैं एक वृंत हूँ। चिड़ियाघर जैसा बंद किनारों में उगाई गई जीवन बेल, मैं मरमर कर मुस्कुराने को मजबूर हूँ, मैं पार्क की घास हूँ। अगली कविता है यथार्थ या आभास। लोग हैं जो हमेशा नेट से जुड़े रहते हैं, 24 घंटा हर लम्हा, यह नेट उनका एक समाज है, समाज से ज़्यादा रंगीन, ज़्यादा चटकीला, ज़्यादा हसीन। जब वे कनेक्ट नहीं होते दम घुटता है उनका, यथार्थ बर्दाश्त के बाहर है, वे अकेले हो जाते हैं टापू की तरह, समंदर में प्यासे की तरह, अवसाद के शिकार, जैसे समाज से दूर हो गए वो, दुनिया से कटे महसूस करते हैं। दुनिया से जुड़े रहना, वर्ल्ड वाइड वेब में रहना उनकी मजबूरी है। उनके बगैर वे पर कटे पंछी हैं, कहीं कोने में दुबके हुए मेढक शायद, नेट उनकी दुनिया है, ये हाथ हेलो लोल ट्रोल वायरल डिलीट लिंक बॉक्स चैट बॉक्स लाइक कमेंट उनके जीवन के अंग बन उनके स्वभाव में घुलते जा रहे। उसके बगैर इस सारी दुनिया में उनका जी नहीं लगता, आभासी दुनिया।

उसका स्वप्न नहीं यथार्थ है, क्योंकि यथार्थ भी एक स्वप्न है, आभासी दुनिया हमारी दुनिया का नया अवतार। अगली कविता है, मैं नहीं जानता। जाने कितने फूल खिल रहे, मैं नहीं जानता। कितने अंकुरों के फलक पंखुड़ियों से खिसक कर फैल गए, कितने फल पक रहे पेड़ों पर, कितनी तितलियाँ उड़ उड़ कर उनके डालों पर तैर रही, मैं नहीं जानता। कितने फसल तैयार हो रहे हैं खेतों में, मेड़ों पर घास का फैलाव बढ़ता हुआ, कितने वृक्ष अपनी पुरानी काया पर आते जाते उड़ते बैठते पंछियों का साक्षी बनते, मैं नहीं जानता। और कितनी मिट्टी घुल चुकी धार में, कितने पर्वत रेत बन गए, सोन के गर्भ में चले गए, कितनी सुगंध

पेड़ों पर कितनी तितलियां उड़ उड़कर उनके डालों पर तैर रही मैं नहीं जानता। कितने फसल तैयार हो रहे हैं खेतों में, मेड़ों पर घास का फैलाव बढ़ता हुआ, कितने वृक्ष अपनी पुरानी काया पर आते जाते उड़ते बैठते पंछियों का साक्षी बनते मैं नहीं जानता। और कितनी मिट्टी घुल चुकी धार में, कितने पर्वत रेत बन गए, सोन के गर्भ में चले गए, कितनी सुगंध कलियों की फिजा में बिखर चुकी, कितना प्रेम बह चुका रिश्तों में, कितने हास्य लास्य करुणा रुदन वेदना, कितनी लीला माया राज ज्ञात नहीं। रात सोते भर में ही जीवन मैदानों में भर गया, भर गए गीत से हृदय, झकोरे सारे रच बस गए वन उपवन मैं नहीं जानता। कितनी रातें रीत गई चंदा चकोरी की कहानी, निस्तब्ध आकाश की वनाली में कितनी निहारिकाएं सो रही मैं नहीं जानता। तीसरी अगली कविता है मन का आकाश। वृक्षों पर पंछी का कलरव है, शाम शांत उदास है, आकाश साफ है सिवा बादल के कुछ बूंदों के, शाख टहनियों पर हरितिमा के साथ सांध्य प्रकाश है। पत्ते मूक स्थिर साक्षी हैं गगन में कैसा प्रशांत रंग, मानो समंदर सा आसमान नीला विस्तृत अतल गहरा अनंत अध्येता का साम्राज्य। पुष्प कुछ बोल नहीं रहे, गुलाब चुप है पलाश चुप, शाम की लकीरें चेहरे पर मेरे मन पर उतरती हैं, शाम की लकीरें मेरे चेहरे पर मेरे मन पर उतरती हैं। झिलमिल प्रकाश बेला कोई कोलाहल बसता नहीं मन में, कोई कलरव रिझाता नहीं मन, शून्य भाव निश्चल मन सा आकाश किसी अस्ताचल सा रंगता नहीं, मन का विस्तार भरता नहीं किसी उत्सव सा, मन का सैलाब डुबोता नहीं कोई प्रेम दीप, मन है कि प्रसरित है सुबह के कोहरे सा निमीलित, मन है जो प्रसरित है सुबह के कोहरे सा निमीलित। अगली कविता का शीर्षक है जीवन गीत। चिमनी से धुआं निकलते घर से लगता है घर जिंदा है, चिमनी से धुआं निकलते घर से लगता है घर जिंदा है, पगडंडियों पर मरी हुई घास से कि पगडंडी जिंदा है, बुहारे हुए फर्श से कि कमरा जिंदा है, दिया बाती से आते हुए शोर से, खिड़की के पल्लों से सूखते हुए कपड़ों से, उड़ती पतंग से कि शहर जिंदा है, खेल के मैदान से सागर तट से जगमग रोशनी से, बच्चे की किलकारी से चहकती धूप से, परिंदों की उड़ान से खुले आसमान से, नीले वितान से कि नभ में हरियाली है, खेत से खलिहान से मवेशी के बथान से, गिलहरी खरगोश से पत्तों के घटा घोप से, सड़क के मोड़ से तारों भरी रात से, रिमझिम बरसात से ज्वार और भाटों से, गिरजाघर के घंटों से मंदिर के द्वार से, प्रणय की रात से नदी नीर प्रवाह से, प्रेम की सौगात से लगता है जिंदा है यह शहर खेत पृथ्वी पवन आसमान देश, लगता है जिंदा है यह शहर खेत पृथ्वी पवन आसमान देश। अगली कविता का शीर्षक है रचनाकार। कभी कविता को कविता कहते डर लगता है, पता नहीं वह कविता हो न हो। कभी कविता को कविता कहते डर लगता है, पता नहीं वह कविता हो न हो, शायद कोई गल्प गद्य बातचीत जुमला फर्द बयान कोरी गप निश्वास मामूली भटकन उद्गार कोई हो, या फिर मात्र कुछ पंक्तियाँ इधर की उधर की, या पति पत्नी की बात प्रेमी की मुलाकात से छूटी हुई गपशप, या कोई तीर कमान प्रत्यंचा पर चढ़ी हुई जबान, या यूं ही कुछ शब्द के मेल जोल बैर भाव प्रीत प्रेम के निःशब्द

0: और कभी डर लगता है रचना भी कहते, क्योंकि मूलतः हम नहीं रच सकते, क्योंकि मूलतः हम नहीं रच सकते जो बहुत पहले रचा जा चुका है। अगली कविता का शीर्षक है याद की याद। जब इस जग से विदा हो जाऊंगा तो क्या इस दुनिया की याद सताएगी, जैसे घर की याद सताती है जब दिल्ली चला जाता हूँ, या जब सुदूर हिमालय के गांवों से होकर गुजरता हूँ। क्या याद आएंगे रिश्तेदार, संबंधी, परिवार, दोस्त, पालतू कुत्ता प्लूटो, उसी तरह जैसे एक जगह छोड़ दूसरी जगह जब जाते हैं। जब इस जग से विदा हो जाऊंगा तो क्या इस दुनिया की याद सताएगी, एक पेड़ पौधे को छोड़ दूसरे पेड़ों के बीच बसने, आकाश की धूसर उदासी जब तपती है, ग्रीष्म की दोपहरिया जब बियाबान घोलती है मन में, जब सांसों से प्रेम बिछड़ जाता है, जब नीम बबूल के वृक्ष के कांटे हवा में चुभते हैं, जब सेमल के हरे पत्ते गुलमोहर के साथ ऊँगते हैं। क्या याद आएंगे दुनिया से जाने के बाद। अगली कविता का शीर्षक है बहती नदी। मेरे अंदर बहती है एक नदी, जो भाव प्रेम वेदना निजता को अपने पेटी में उड़ेलती जाती है। नदी जो भाषा अर्थ अन्वित समष्टि वो समाविष्ट कर डालना चाहती है अपने भ्रूण कक्ष की डिम्बित दीवारों के बीच। नदी जो भाषा अर्थ अन्वित समष्टि को समाविष्ट कर डालना चाहती अपने भ्रूण कक्ष की डिम्बित दीवारों के बीच, जो मूल्य संस्कार प्रतीति राग पीड़ा के तटों को छूकर बहती है। नदी अपने आप से विद्रोह करती है, बिखर जाती है, तटों को छोड़ उमर पड़ती है, उफनती है, भंवर खाती, गहरी बहती, बहा ले जाती है। नदी अपने आप से विद्रोह करती, बिखर जाती है, तटों को छोड़ उमड़ पड़ती, उफनती है, भंवर खाती, गहरी बहती, बहा ले जाती है जीवन के सभी सत्य उपादान उत्कर्ष। फिर एक खालीपन बसता जाता है, नदी बह चुकी है, नदी बह चुकी है जीवन उत्सर्ग से, निकल चुकी है भगीरथी के मलयज घाटियों से होकर, समेटने लगी है धरती का साम्राज्य, समुंदर से अभिसार करने लगी है, क्षितिज की भी पावन रेखा के पार तक अपने अस्तित्व में खोने लगी है। नदी समुंदर से अभिसार करने लगी है, क्षितिज की पावन रेखा के पार तक अपने अस्तित्व में खोने लगी है नदी। अगली कविता का शीर्षक है प्रतिध्वनि। अब उसकी आवाज़ में आत्मीयता की महक नहीं, न उस प्रेम की सुगंध, न हृदय के ज्वार का शोर, न कंपन प्रेम तरंग का, न परावर्तन उस पीयूष संसार का। अब उसकी आवाज़ में आत्मीयता की महक नहीं, न उस प्रेम की सुगंध, न हृदय के ज्वार का शोर, न कंपन प्रेम तरंग का, न परावर्तन उस पीयूष संचार का। अब उसकी आवाज़ फीकी शुष्क जीवनहीन ध्वनि मात्र है। अब उसकी आवाज़ फीकी शुष्क जीवनहीन ध्वनि मात्र है, जहाँ अब जीवन नहीं खनकता, हृदय की सोंधी नरमाहट नहीं, न नैनों में आलिंगन है, न उन्माद विरह का। एक समाप्त होती निचाट धूप है, एक समाप्त होती निचाट धूप है उसकी बातों में, जिसमें सब कुछ सूख गया है, जिसमें सब कुछ सूख गया है।
1: इन्हीं कविताओं के साथ श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, परंतु जाने से पूर्व आपसे एक निवेदन कि यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई भी सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@aarpatna.gmail.com। तो श्रोताओं, अपने जीवन में साहित्य को स्थान दीजिए, नई कहानियों कविताओं को पढ़िए और थोड़ा लिखना भी प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जब आप साहित्य से जुड़ेंगे तो संवेदना आपके अंदर खुद ही समाहित होने लगेगी। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।

FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रस रंग।

सौरभ गंगल और अनुष्का गुप्ता की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे नैनो की शरारत। आइए सुनते हैं चुरा के दिल मेरा, बेनी दयाल और अनमोल की आवाज़ों में अगला गीत।

मेरी अश की ये गीत आप सुन रहे थे रीना मेहता और देव नेगी की आवाज़ों में। अब आइए सुनते अगला गीत, फिर आओगे, अमी मिश्रा की आवाज़ में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। फिर आओगे कल की आवाज फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में समीर का लिखा गीत है, नदीम श्रवण का संगीत है।

कल की आवाज़ फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। अगला गीत आइए सुनते हैं कसूर फिल्म से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीत को लिखा है समीर ने और स्वरबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

फूल और कांटे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। और श्रोताओं भाई सुनते हैं अगला गीत, राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म से गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, देव कोहली के लिखे गीत और जतिन ललित का संगीत।

बताओ कल। कल श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होगी, जो कि 5:53 पर सुबह शुरू होगा और सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होगा। 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस पाठ, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह 8 बजे दिल्ली से समाचार प्रभात का प्रसारण होगा, जो हमारे केंद्र से रिले होगा। सुबह 8:15 पर देशभक्ति गीत आप सुनेंगे और सुबह 8:20 पर आप सुनिएगा फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी। सुबह 8:45 पर हम पटना से सुनवाएंगे आपको प्रादेशिक समाचार।

राजू बन गया जेंटलमैन इस फिल्म के गीत के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं।

सुबह 9:10 पर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे गीत मालिका, और सुबह 9:30 पर विविध भारती से सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार।

सुबह 10 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और सुबह 10:05 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम विकास के सोपान। इसमें रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नरैना स्थित ग्राम पलौंधा में विकास कार्य और योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सुबह 10:30 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत आप सुनेंगे। सुबह 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे रसधार। दिन में 11 बजे लोकमाधुरी कार्यक्रम में आप भोजपुरी एल्बम लोकगीत सुनेंगे। दिन में 11:20 पर आप सुनेगा विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और 12:05 पर दोपहर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती की गीतमाला। दिन में 1 बजे दोपहर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। शाम 4:30 पर आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी लेंगे और 4:35 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत आप सुनेंगे। शाम 5 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और शाम 5:05 पर आप सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप सुनेगा भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और कल के इस किसान वाणी में सूत्रधार होंगे प्रवीण कुमार दुबे और सुषमा सिंह। शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और शाम 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास का प्रसारण होगा। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा जो हमारे केंद्र से रिले होगा। शाम 7:50 पर आप सुनिएगा हेलो मनपसंद कार्यक्रम जो कि फोन इन फरमाइश कार्यक्रम होगा।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान और रात्रि 8:15 पर सुनेगा हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा और रात्रि 9 बजे हम लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम लोक धारा। रात्रि 9:15 पर सजेगी गजलों की महफिल और रात्रि 9:30 पर सुनेगा विविध भारती से आज के फनकार कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग प्रसारित होगा और रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। और रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी मिलेगी। तो श्रोताओं, ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और अब आइए हिंदी में समाचार के लिए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी।

0: के दिल्ली केंद्र।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel.

रहे श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।